أشد منهم بطشا.

تستوى

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।
2: इट्स 10 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे जी एफ एम नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नतीजन में मुबैना हेरा फेरी पैंज नवाजी खिलाफ मुतासर शागिदों सियासी समाजदूरन एजाज रैली कढ़ी कमीशन ऑफिस के गेट आरो धरणो हयो। कमीशन इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी कई वही। साल 2024 के चटाभेटी इम्तिहान जारी कल नतीजा रद्द। इम्तिहान की शफाफ जांच कराने मुतालबो।

सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने साल 2024 जी वारी गडियल चटाभेटी इम्तिहान नतीजा सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज। सिंध हाईकोर्ट सखर बेंच एस पी एस चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी इम्तिहान वठंदड़ कंट्रोलर के नोटिस जारी कंदे 2 जून तई जवाब तलब कर वरतो। जस्टिस अमजद अली बोयो और जस्टिस अली हैदर अदा थे उधर बरुकनी आइनी बेंच आइनी पटिशन के बुधन जोगो करार डींदे धुरन के नोटिस जारी कर छिया। दरख्वास्त में मौकफ अख्तियार किया वो अहल उम्मीदवार के नजरअंदाज करें नवाजी कई वही नतीजा कालाजम करार दई जवाबी कापियों चेक कराने की सदा कई वही।

पेरेडी कुकिंग क्वीन पिंकी के शाही प्रोटोकॉल इनर कराची पुलिस जो बेदी फुर्तियों मंदशास फरोश अनमोल उर्फ पिंकी जो रिमांड हासिल करे वरतो। कराची पुलिस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन रखने की अदालत में पिंकी के जेल मोकलन वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले के चैलेंज कर अदालत दरख्वास्त मंजूर कदे कुकिन क्वीन पिंकी के टिन डी रिमांड से पुलिस हवाले कर छोड़ो। पुलिस अनमोल उर्फ पिंकी के जेल में जांच ला हिरासत में भी वी छो। डीआईजी दखण चो तो पिंकी जो रिमांड मिली वो है। पिंकी मथा माजी में दाखिल केस का तफसील भी गुड कर वरता है। कुकिन क्वीन अनमोल और पिंकी जो गिरफ्तारी बाद जान नशीन मुकरर करने वो ऑडियो भी सामू अची वो। गिरफ्तारी बाद कल ऑडियो में पिंकी जो खरीदार के सिलसिलो जारी रहने जो पैगाम पिंकी मंदशात खरीदार के राबते लाए नंबर भी दई छो। ऑडियो में पिंकी मंदशात वक्सान से गिरफ्तारी बाबत आगाही दींदे चई रही है जैसे मुख्य कुछ भी थे तो इन नंबर तक मुझे दोस्त तवा सा राबते में इंदो जो इन कम के संभाल इंदो इन नंबर तक कम हलो रो। गुजल डी लीक थे ऑडियो में जवाबदार पिंकी चई रही है तो अवा मान अकुल गोडन में है। अठ नव साल मुझे पुठिया लगा रहो था रिटायर थी वनो था पर पकड़े न था सको। सेनेट के घरू मामलों बाबत कमेटी कुकिन क्वीन पिंकी वाले केस जो नोटिस वरतो। डीआईजी एएनएफ इंदर इजलास में तलब कमेटी चेयरमैन फैसल सलीम चौथ पिंकी कें मंशात फराम कंदी हुई समूरा तफसील पेश कया वन। सेनेटर समीना जहरी चौथ मंशात विक्रो कदड़ औरत जो इजाज रहने वो अंदाज छिड़काईंदड़ हो। मंशात विक्रो कदड़ सरियाम घुमी रहा है अस इत मरण ला वेठा आयो। सिंध सीनियर वजीर शर्जीलीना मेमण चवाए तो अनमोल और पिंकी समूरे पाकिस्तान में मंशात सप्लाई जो नेटवर्क हलाई रही हुई संदस गिरफ्तारी वही कामयाबी है। अड़ी कार्रवाई से सिंध पुलिस जसल है। पंजे बयान में शर्जील मेमण चवाए तो पिंकी वे अरसे का कानून लागू इदारन के घुर्बल हुई खेस कोर्ट में जे अंदाज में पेश किया अमल अफसोसनाक हो। हुकूमत मंशात फरोशन खिलाफ बिना फर्क की कार्रवाई कर रही है।

कराची में पिंकी का पोए मलका बसोगी कराची में मंदशाह जो नेटवर्क हलाइंदड़ औरत नरगिस उर्फ मलका गिरफ्तार 35 किलो चर्स और 1,00,000 रुपया रोक रकम हथ शुरुआती जांच मूजिब हथियल चर्स की मालियत 60,00,000 रुपये का वधीक है जेका कराची के मुख्तलिफ पोश इलाकन में सप्लाई आए विक्रो थेणी हुई। पुलिस मूजिब गिरफ्तार औरत मलका जो कराची में मंदशाह जो वो नेटवर्क है सदस्य बेन साथियों के भी जल्द गिरफ्तार किया वो।

सिंध में 3 अरब 88 करोड़ रुपए की कणक चोरी साबित थियण ते खुराक खाते जे 3 अरब अमलदार नौकरियों में बरतरफ 2 अरब 9 करोड़ 93 लख रुपए की करप्शन करण थे फूड इंस्पेक्टर ज़हीर बिरोई जकबाद में 59 करोड़ 62 लख की करप्शन थे फूड सुपरवाइजर ज़ैब अली मंगसी की नौकरी चट कमर सिदातकोट जो फूड इंस्पेक्टर अमानुल्ला मंगसी करब 19 करोड़ रुपए की करप्शन करण थी नौकरी में फारिग खुराक खाते की वजीर मखदूम महबूब जमान चो तो नौकरियों में बरतरफ कल मुलाजमन खिलाफ केस दाखिल किया वेंदा बरतरफ कल मुलाजमन का सरकारी नुकसान की रकम भी उगाड़ी वेंदी।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरें इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
3: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरडमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ अध मथे जो सूर अखिन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सबनी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबुह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई बरोज जुमो मोकल आहे एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण वधिक मशोरे राबते जे लाए 0327-99-84-763 मुल्क में गर्मी जी शदीद लहर जारी आहे जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी मेहरबानी करे एहतियाती उपाय वठो बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो बाहर निकरण वक्त कंध ऐं जिस्म खे ढकियो घणो पाणी वापराइण जी आदत ठायो ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो हल्का ढिलो ऐं हल्के रंगन वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाही लाइ पेश कयो वियो
2: जो शहर पंहिंजो घर सकरण ऐं सकरण जो आवाज़
4: GFM 90.8

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

सहकार में फ़ाइदो ऐं चिकताण सां नुक़सान थींदो आहे। चीनी सदर शी जिनपिंग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे मुख़ालिफ़ बदिरां भाईवार थियण जो मशवरो ॾेई छॾियो। चीनी जे दौरे ते बीजिंग में मौजूद अमरीकी सदर ट्रंप जी चीनी सदर शी जिनपिंग सां मुलाक़ात, बतरफ़ लाॻापन समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं। शी जिनपिंग सदर ट्रंप खे ताइवान बाबति ख़बरदार कंदे चयो त मामले खे दुरुस्त नमूने न संभालियो वियो त ॿिन्ही मुल्कनि जे लाॻापा टकराव तरफ़ वधी सघनि था। सदर ट्रंप चीनी सदर सां मुलाक़ात खे कामयाब करार ॾींदे चयो आहे त बीजिंग ऐं वॉशिंगटन जे लाॻापा तारीख़ी बुलंदियुनि तरफ़ वञण वारा आहिनि। चीनी ऐं अमरीकी सदरनि में मुलाक़ात तक़रीबन 2 कलाक जारी रही।

ईरान खिलाफ़ साजिश करण जो एहतसाब कयो वेंदो दुश्मन सां गॾु बीठड़नि खे पंहिंजे अमल जो जवाब ॾियणो पवंदो। ईरानी परे वज़ीर अब्बास राख़्ती चयो आहे त ईरान अवाम खिलाफ़ बेवकूफ़ी ते बदल जो आहे। ईरान खिलाफ़ दुश्मन लाइ इसराइल सां गठजोड़ माफ़ी जोॻो नाहे।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
1: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से

0: This program is brought to you by
1: Bengal Habib, Rishta Bharose Ka.
2: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरणमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस: सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन, बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम गरम वक्त सुबुह 11 खां शाम 4 वॻे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाव तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
3: हर चप्पा, हर गोशा,
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में, ट्रक में, रिक्शा में, कार में, बाइक पे, जिस पे भी, जहाँ भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी. और इसके अलावा जी वो लोग जो लोग या सालगिरह हैं उनको कहेंगे मनी मनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो उनको जाएंगे मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस. आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आमीन सुम्मा आमीन.

ओके जी, प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी तीन तरीके कार से. आप लोग सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आर टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 888 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है जो कि है www.facebook.com/fm88gsakhar. के ऊपर आने के बाद सिंपली आप सर्च करें fm88gsakhar. इसके ऊपर आने के बाद आपको मिलती है एक अदद पोस्ट जो कि होती है जिंदगी गुलजार है कि. उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल करेंगे. दो सेगमेंट्स में आप लोगों के लाइव कॉल्स को रिसीव किया जाता है. सो दो कौन से सेगमेंट हैं वो आपको मैं बताऊंगी. अच्छा, काफ़ी दिन से नहीं बल्कि तीन वीक से हमारा जो सेगमेंट था हरा भरा पाकिस्तान वो नहीं हो रहा था. तो आज हम हरा भरा पाकिस्तान भी कर रहे होंगे 12 बजे के बाद एग्जैक्टली लाइव. ठीक है जी. तो आज हमारे पास एक और एक एडिशनल सेगमेंट दैट इज हरा भरा पाकिस्तान. ठीक है.

इसी के साथ हम एक और गाना प्ले करेंगे एंड द सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे. छोटा सा कमर्शियल ब्रेक होगा मेरे पास, सो स्टे ट्यून्ड. जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन GFM रेडियो नेटवर्क सिंध की आवाज.

0: मेरा
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाँ हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पांजो मुकम्मल चेकअप करायो होम्योपैथिक इलाज से कुदरती शिफा हासिल करो सेहत तंदुरुस्ती की नई राह से गामजन थो तो देर छो अवे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो जिगर गुर्दे पिते की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखिन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई बरोज जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण। वधिक मशोरे राबते 0327-99-84-763।
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और ब्यूटीफुल सॉन्ग सॉन्ग सुनेंगे, आगे चलेंगे.

0: Okay, so welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार, और एक बार फिर से गाने के साथ वापस आ चुके हैं जी. और हमारे पास ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हैं, सो गाना हमारा जो है ऑलमोस्ट पूरा खत्म होने की जानिब. और नेक्स्ट कॉलर में लेने जा रही हूँ लाइन पे, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कॉलर कहाँ से.
1: जी एम बलोच मिर्पुर.
0: अरे जी एम बलोच भाई, किधर से आ रहे हैं इतने दिनों बाद.
1: आप लोग काली नहीं अटेंड करते हो, मेरी डेली कॉल लगती है, अटेंड नहीं होती.
0: अरे नहीं, आज के बाद हम आपकी कॉल अटेंड किया करेंगे.
1: नहीं, वजह क्या, अब देखिए कॉल नहीं लगे तो वो एक बात है, लेकिन जब कॉल लग जाती है तो आपका राइट बन जाएगी हमारी कॉल को.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है. और पॉसिबल है कि जब आपकी कॉल लगती हो या तो उस वक्त गाना चल रहा होता होगा, या ब्रेक होता होगा, या मैं बात कर रही होती होंगी. तो ऐसे हो जाता है कि जब लिसनर्स कॉल कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग ही सारा लग नहीं पाती है लगने के बाद भी. तो ये वाकई एक जो है ना इत्तेफाक है.
1: अच्छा, आपकी इस बात को मैं डिसएग्री करता हूँ. जो आपने इससे पहले कहा था कि मैं लाइट तो हो रहा है और कपड़े बदल के जाऊंगा, सागर भाई को मिल रहा हूँ, लेकिन हम कोई देहात या जंगल में या गांव में नहीं रहते हैं, शहरों में रहते हैं. और ये नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट कोई ऐसा काम किया है कि हम लाइटों के मेयर हूँ. नहीं, ये गलत बात है. जो रियलिटी है आप उसको माने, ठीक है ना. और ये
0: तो भाई मेरे सीरियस लेने की क्या जरूरत है, वो सिर्फ गाना है. वो तो हमें भी पता है कि लाइट सब है, हम शहर में रहते हैं.
1: लेकिन आपने डिटेल दी ना, तो उस बात पर मैं बात कर रहा हूँ.
0: अच्छा, मैंने जो कहा कि लाइट नहीं होती,
1: आपने
0: आपके पास होती है.
1: बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपने लुकमा दिया है कि भाई
0: तो वो तो लॉजिक है ना, उसमें क्या शक बात है. आजकल लोड शेडिंग देख ले कितनी ज्यादा हो रही है, तो मैंने उस बात पे कहा है. अब ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई कच्चे के इलाके से आती हूँ और वहाँ पे लाइट नहीं होती. तो ये बात है ना, तो इस बात पे मैंने कहा था. तो आपने शायद गलत समझा होगा कि मैं इस तरह कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास तो लाइट नहीं होती, हम तो गाँव में रहते हैं. नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, लोड शेडिंग तो शहरों में बहुत ज्यादा हो रही है. तो ये बात है. अच्छा, गाना सुनाना था वैसे आपने.
1: नहीं, गाना आपने जो ये अभी गाना चलाया ना, वारिस में था.
0: हाँ, अच्छा नहीं था
1: ये. मैं इसको लाइक करता था, क्योंकि हमारा एक दोस्त है अमेरिकन, वो भी इसको बहुत पसंद करता था, तो वो चला गया अमेरिका. तो उसने मुझे कहा था कि यार ये जो इसका गाना है ना, वो जरूर कहना कि मुझे सुना.
0: अच्छा,
1: तो आपने सुनाया नहीं था. जनरल चलो यहाँ उन्हीं की आवाज में दूसरा सॉन्ग सुन लिया हमने.
0: चलें, ठीक है जी, ठीक हो गया. और कुछ कहना चाहेंगे.
1: तमाम सुनने लोगों के अपना ख्याल रखें और गर्मी से बचें बस.
0: ओके जी, थैंक यू सो मच. आप भी गर्मी से बच के रहें. अल्लाह हाफिज, थैंक यू. स्वीट कॉलर और ब्यूटीफुल सॉन्ग.

0: Express PM. This time check is brought to you by
1: Michael Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
3: जल निकाब गुजी मुलाकात ऐं राबता शामिल ना आहिनि। ईरान जंग दौरान इसराइली वज़ीर आज़म गॾियल अरब इमारतनि जो दौरो नाहे कयो। ईरान खिलाफ़ साज़िश कंदड़नि जो एहतसाब कयो वेंदो। दुश्मन सां गॾु बीहंदड़नि खे पंहिंजे अमल जो जवाब ॾियणो पवंदो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ी चयो आहे त ईरानी अवाम खिलाफ़ बीहण बेवकूफ़ी ते ॿधलु आहे। ईरान खिलाफ़ दुश्मनी लाइ इसराइल सां गठजोड़ माफ़ी जो कोन आहे। कोकीन पिंकी जा मंशात केस में गिरफ़्तारी बाद चिरकाईंदड़ इंकशाफ़। पिंकी जी गैंग में पंज मर्द ऐं हिकु औरत बि शामिल। ज़रियनि मूजिबि अनमोल उर्फ पिंकी मंशात जो समूरो कारोबार

0: सहकार में फ़ाइदो ऐं चिकताण सां नुक़सान थींदो आहे। चीनी सदर शी जिनपिंग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे मुख़ालफ़त पदरां भयवार थियण जो मशवरो ॾेई छॾियो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे चीनी सदर शी जिनपिंग सां मुलाक़ात। शी जिनपिंग सदर ट्रंप खे ताइवान बाबति ख़बरदार कंदे चयो त मामले खे दुरुस्त नमूने न संभालियो पियो, लाॻापा टकराउ तरफ़ वधी सघनि था। आलमी बहिराणे जो हल रुगो सफ़ारतकारी ऐं ॻाल्हियूं आहिनि। सदर ट्रंप चीनी सदर सां मुलाक़ात खे कामयाब करार ॾींदे चयो त बीजिंग ऐं वॉशिंगटन जे लाॻापा तारीख़ी बुलंदनि तरफ़ वञण वारा आहिनि। चीनी ऐं अमरीकी सदरनि में मुलाक़ात तक़रीबन 2 कलाक जारी रही। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ईरान सां जंग दौरान गॾियल अरब इमारतनि जो गुझो दौरो कयो हो। परॾेही ख़बरूं इदारे जी दावा, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जी आफ़िस नेतन्याहू जी यूएई जे गुझे दौरे जी तस्दीक कंदे चयो आहे त नेतन्याहू ईरान ख़िलाफ़ जंग दौरान गॾियल अरब इमारतनि वियो हो। हिन यूएई जे सदर मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नहयान सां बि मुलाक़ात कई हुई। यूएई इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जे गॾियल अरब इमारतनि जे गुझे दौरे जी तरदीद करे छॾी। परॾेही वज़ारत मूजिबि इसराइल सां लाॻापा इब्राहिमी मुआहिदे तहत शफ़ाफ़ ऐं ऐलानिया आहिनि, जिन में का बि गुझी मुलाक़ात ऐं राब्ता शामिल न आहिनि। ईरान जंग दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म गॾियल अरब इमारतनि जो दौरो नाहे कयो। ईरान ख़िलाफ़ साज़िश कंदड़नि जो एहतसाबु कयो वेंदो। दुश्मन सां गॾु बीहंदड़नि खे पंहिंजे अमल जो जवाबु ॾियणो पवंदो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकज़ी चयो आहे त ईरानी अवाम ख़िलाफ़ बीहण बेवकूफ़ी ते ॿधलु वियो आहे। ईरान ख़िलाफ़ दुश्मनी लाइ इसराइल सां गठजोड़ माफ़ी जो कोन आहे। कोकीन क्वीन पिंकी जा मंशात केस में गिरफ़्तारी बाद चिरकाईंदड़ इंकशाफ़। पिंकी जी गैंग में 5 मर्द ऐं 1 औरत बि शामिल। ज़रियनि मूजिबि अनमोल और पिंकी मंशात जो समूरो कारोबार ऑनलाइन हलाईंदी हुई। 1 ग्राम कोकीन जा 15,000 रुपया वठंदी हुई। नवां ख़रीदारनि खे मंशात राइडर्स बदिरां कंहिं मखसूस जॻह ते रखी इतार ॾिनो वेंदो हो, जंहिं बाद ख़रीदार ॿुधायल जॻह तां मंशात खणंदो हो। अनमोल उर्फ़ पिंकीअ ख़िलाफ़ पंजाब में बि जांच शुरू। CCD अनमोल उर्फ़ पिंकीअ जे मुड़ुस रिटायर्ड इंस्पेक्टर खे जांच लाइ तलब करे वरितो। पंजाब पुलिस जे ज़रियनि मूजिबि पिंकीअ वारे मामले जी जांच CCD करे रही आहे। सकरन वेझो भाणे जथां मामो क़तल। घोट जतो मक्सीअ में जवाबदार मिस्री जमाली पंहिंजे मामे शमस जमाली खे क़तल कयो। पंहिंजे अकलबर सां घोट चौंगा में कलोड़ा बिरादरी जे बिंदड़नि में मामूली ॻाल्हि तां झेड़ो। सलीमुल्ला कलोड़ो मारिजी वियो। ॿी दुर जा 3 ॼणा ज़ख़्मी थिया। नगर पालकर में सिंधी हारी तहरीक ऐं अवामी तहरीक पारां वधंदड़ महांगाई ख़िलाफ़ एजाजी रैली। अवामी हाउस खां मिस्किन जहान खान कोसो चौक ताईं रैली कढी पई। शहरनि परतम सियासी समाजी ऐं मज़हबी धुरनि जी शिरकत। तेल जॻहनि में वाद वापसि वठी महांगाई ते ज़ाब्तो आणे अवाम खे रिलीफ़ फराहम करण जो मुतालबो। मदेजी में जलबाणी बिरादरी जो एहतजाज। पुलिस ते नौजवान खे खंभे गुम करण जो इल्ज़ाम। मुज़ाहिरनि मूजिबि पुलिस नौजवान वली खान जलबाणी खे खंभे गुम कयो आहे। आला अख़्तियारी नोटिस वठी नौजवान खे आज़ादु कराइनि। ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। ऐं नाज़रीन, मीरपुर भठोरो वेझो झोक शरीफ़ ऐं सवें ॻोठनि खे पीअण जो पाणी फराहम कंदड़ गंज पहर कैनाल में पाणी जी खोड़ पैदा थी वई। गंज बहर कैनाल में पाणी जी खोड़ सां आबादगार सारनि जो फसल बि न पोखी सघिया। पीअण जे पाणी जी बि खोड़ पैदा थी वई। औरतनि ऐं ॿार परे परे वारनि इलाइक़नि मां पाणी भरण ते मजबूर।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसानों को

0: छा अमा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरें ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखिन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई बरोज जुमू मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण मशोरे रबते 0327-99-84-763। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाय वठो। बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो। बाहर निकरण वक्त कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठायो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का ढिलो ऐं हल्के रंगन वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाही लाइ पेश कयो वियो।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: कीजिए, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपको और मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. एक और ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं जी. हमारा सेगमेंट जो कि होता है एवरी थर्सडे, जिसका नाम है हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है HFT पाकिस्तान, इट मीन्स के हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान, और इसके दामों से आप ये सेगमेंट सुन रहे होते हैं. और इस सेगमेंट में मैं अकेली नहीं होती, हमें ज्वाइन करते हैं चाइना बेजिंग से लाइव एहतसामुल हक. और एहतसामुल हक आज भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं पिछले पूरे 3 हफ्ते बाद. तो एहतसाम को वेलकम करेंगे और कहेंगे खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. बड़ा आपको एग्जैक्ट याद है 3 हफ्तों बाद, लगता है आपने बहुत ज्यादा मुझे मिस किया है. और वो जो 15 मिनट में 15 मिनट जो मैं बोलता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपने उस 15 मिनट में मुझे खास तौर पर बहुत मिस किया.
0: हाँ जी बिल्कुल, बहुत मिस किया मैंने कि 15 मिनट मुझे खामोश रहने को मिल जाते थे, एहतसाम होते थे. तो और सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे सुनने वाले ने भी आपको बहुत मिस किया, क्योंकि हमारा ये तय हुआ था कि 2 वीक प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन फिर 1 वीक उसमें और एडिशन हो गया, तो वो 3 वीक्स का हो गया जहाँ तक मुझे याद है.
1: जी बिल्कुल ऐसा ही है. असल में यहाँ 6ठे एशियन बीच गेम्स हो रहे थे, चीन का एक शहर है सानिया, और वो चीन का जो कहना चाहिए कि जिस तरह से मालदीव को कहा जाता है कि वो खूबसूरत बीचेस की वजह से मशहूर है, तो इसी तरीके से ही चीन का ये जो शहर है सानिया, ये भी अपने खूबसूरत बीचेस की वजह से मशहूर है, टूरिज्म की वजह से. तो वहाँ एशियन बीच गेम्स हो रहे थे और उसमें पाकिस्तान का वक्त भी था, तो हम उसे कवर करने के लिए गए. 2 हफ्ते तो हमें वहां लग गए, और जब हम वापस आए तो क्योंकि किसी भी टूर पे जब हम जाते हैं और उसकी सारी कवरेज होती है, तो जितना मवाद वहां से गेम्स के हवाले से इकट्ठा हो सका वो तो हमने पेश कर दिया. लेकिन जाहिर है फिर हम उस शहर में घूमे भी, देखा भी, वहां की खास चीजें नोट की, तो उसकी कुछ यूं समझे

के का हिस्सा है। इस शहर की जिस तरह से मैंने कहा कि आबो हवा, इसकी मिट्टी, वो इसे सब्जियों, फलों और अनाज समेत फसलों की एक वसी रेंज जो है वो उगाने के लिए एक बड़ा मिसाली मकाम बनाती है। और शुगवांग की जो जड़ी मसनूआत है वो अपने मयार के लिए भी बहुत इंतहाई कीमती समझी जाती है और चीन और दुनिया भर के बड़े शहरों में बरामद की जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जिस तरह से हम कहें कि कुछ कॉफी बीन्स दुनिया भर में इतने नायाब और अनमोल हैं कि उसकी कॉफी दुनिया भर में महंगी होती है, जानी जाती है, इसी तरीके से जो मिट्टी है ये अपने अंदर ऐसे अज्जा रखती है कि फिर उस मिट्टी से उगने वाली जो प्रोडक्ट है वो दुनिया भर में मशहूर हो जाती है। और यही हाल शुगवांग का भी है। इसकी जो नुमाया तब्दीली है वो इस शहर में जो जरई कहना चाहिए कि एग्रीकल्चरल मॉडिफिकेशंस जो हुई हैं या इसको आप मॉडर्नाइजेशन कहें, और जो इसका स्ट्रक्चर था पूरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी तरक्की कहें, उसमें बहुत ज्यादा पहले सरमायाकारी की गई और शहर ने फसलों की पैदावार को बढ़ाने और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ग्रीन हाउस जो एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट किया और फिर सेहत से मुतालिक ज़राअत में जो जदीद टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया। एक जामे यानी प्रिसाइज लॉजिस्टिक नेटवर्क भी तैयार किया गया और फिर ज़रई मसनूआत को मुल्की और बैन अल-अक़वामी मंडियों तक पहुंचाने में उस स्ट्रक्चर ने बड़ी सहूलत फराहम की है। मयारी पायदार और आला मयार की जो सब्जियां हैं उनकी इंटेलिजेंट प्रोडक्शन हासिल करने के लिए यानी मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए और जदीद टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए एक ज़रई तब्दीली के लिए एक मॉडल कायम किया गया और जो सेहतमंद भी हो, माहौल दोस्त भी हो। इसी वजह से अब इस शहर को चीन का सब्जियों का दारुल हुकूमत कहा जाता है। ये इंटरेस्टिंग एक, एक एक नाम है जो कि हमने कभी इस तरह से सुना नहीं है। नाम सुनते हैं कि एक शहर ऐसा हो जहां इतनी ज्यादा सब्जी उगाई जाती हो उसके हर कस्बे, हर गली, हर कूचे में कि उसको सब्जियों का दारुल हुकूमत कहा जाने लगे, क्योंकि यहाँ चीन में सब्जियों की सबसे बड़ी पैदावार होती है और यहाँ जो हम उसको कहते हैं एक उर्दू में तो थोक मार्केट, होलसेल मार्केट है। तो शुगवांग के तकरीबन हर कस्बे में अब किसी न किसी किस्म की जो सब्जियां हैं उनको उगाया जाता है, उसकी प्रोडक्शन होती है और यहाँ पर जो सब्जियां उगाई जाती हैं उनकी पूरे मुल्क में मांग है। माजी में कई तरह की मुश्किलात का इस जगह का सामना था, उसकी वजह से बेहतर नतायज हासिल करने के लिए फिर फसलों में निस्बतन ज्यादा जहरीले कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल कर दिया जाता था जो खुराक की हिफाजत और जमीन दोनों के लिए खतरनाक।

का है, तो हर जगह तो यूनिवर्सिटी दस्तयाब नहीं हो सकती, जाहिर है हर शहर में तो नहीं हो सकता ऐसा, तो फिर लोग मूव करते हैं पढ़ने के लिए, बाहर चले जाते हैं। और फिर नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप मूव कर जाते हैं तो फिर आपको अगर वो शहर रास आ जाए या आपको पसंद आ जाए तो आप कोशिश करते हैं कि वहीं जॉब ले लें, वापस अपने आबाई इलाके में न जाएं, अगर वो किसी हवाले से पसमानदा है, वहां पर आपकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं होता। कुछ लोग टैग के हवाले से बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो चाहते हैं कि शेंजन गुआंगडोंग चले जाएं, वो अपने इलाकों में न रहें। तो इसीलिए फिर चीन ने एक प्रोग्राम शुरू किया और उसमें उन मेहमानों को कैपिटल दिया गया।

0: उनको इंसेंटिव दिए गए और उनको कहा कि आप वापस अपने कस्बे जाएं जहां से आप आए थे, और वहां जाकर जो आपका ई कॉमर्स है यानी इंटरनेट के थ्रू जो आपकी मार्केट है उसको लें और वहां पर जाकर अपना कोई काम करें ताकि आप अपने शहर से नजदीक रहें। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये कि जो आबादी थी वो मूव होती थी बड़े पैमाने पर छोटे शहरों से बड़े शहरों में, उसको कम किया गया, और फिर सेकेंड ये हुआ कि जिस जगह भेजा गया लोगों को तो उस जगह ने भी फरोख पाना शुरू कर दिया, वहां पर भी तरक्की के आसार हमें दिखने लगे, तो इसीलिए इस पॉलिसी को शुरू किया गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर जो पौधे हैं उनके बीज को चिप्स कहा जाता है, जैसे नॉर्मली हम जो हमारे गैजेट्स होते हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है चिप्स, तो यहाँ पर बीजों को चिप्स कहा जाता है, और साइंसी तहकीकी इदारों यहाँ तक के कारोबारी इदारों की भी यहाँ बढ़ती हुई तादाद देखी गई और फिर नई इकसाम के बीज जो है वो तैयार किए गए। मैं अभी जब आपसे जिक्र कर रहा था कि सानिया हम गए और कुछ हमने वहां जाके चीजें भी देखी, तो एक सेंटर का हमने दौरा किया जिसको कहा जाता है याजूबे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी। ये 3,000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ एक पूरा शहर है, उस शहर में लोग बसते हैं और ये आम लोग नहीं है, वो लोग जो वहाँ काम की तरह से आते हैं, और वो एक पूरा सेंटर बनाया गया है जहाँ दुनिया भर से तकरीबन 15,000 इदारे जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, कंपनीज रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, और उस जगह का सिर्फ एक काम है और वो काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D सेक्टर जिसको हम कहते हैं। पूरी दुनिया से लोग वहाँ जमा होते हैं, चीन भर से लोग वहाँ जाते हैं, जो मुख्तलिफ सीजन होते हैं उनमें डॉक्टर, उनमें जो PhD स्कॉलर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है, फार्मर्स को बुलाया जाता है। दो हवालों से काम होता है वहां पर, एक तो जो नए बीज हैं उनको तैयार किया जाता है, और दूसरा ये कि जो डीप सी आप जो तहकीक है समंदर की तह में जाकर मशरूम्स के हवाले से, कोरल रीफ्स के हवाले से, आबी हयात के हवाले से, वो तहकीक वहां की जाती है। तो इसी तरीके से हमने ये देखा है कि चीन में बीज की तहकीक के हवाले से बहुत काम हुआ, क्योंकि चीन ये चाहता है कि उसे बीज इम्पोर्ट ना करना पड़े बाहर से और वो अपनी गजाई जरूरियात को अपने ही बनाए गए बीजों से हासिल कर सके, और यही वजह है कि 70% से ज्यादा जो बीज इस्तेमाल होते हैं शुगुआंग में वो शुगुआंग की अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अब यानी नए बीज तैयार करके उनको टेस्ट करके उनसे फसलें हासिल करके अब जो है वो उनके राइट्स भी हासिल कर लिए गए हैं जो कि 70% से ज्यादा है, जो कि एक बड़ी तादाद है। इस शहर की जो सबसे खास चीज है वो ये कि यहाँ टमाटर की कई इकसाम पैदा होती हैं, कहा जाता है कि तकरीबन कोई 20-25 से ज्यादा किस्म की टमाटर की इकसाम है जो यहाँ उगाई जाती हैं, और यहाँ टमाटर टनों की तादाद में पैदा होते हैं, टनों की मकदार में पैदा होता है, उनको शुमार करते हैं, और यही वजह है कि यहाँ से ही पूरे शहर में जो टमाटर हैं पूरे मुल्क में वो तकसीम किए जाते हैं, वो भेजे जाते हैं। और फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज, वक्त हमारे पास कम है, ये हम बताएं कि इस शहर में सब्जियां उगाने के बाद इसे मुल्क भर में भेजे जाने के लिए जो हम स्मार्ट लॉजिस्टिक सिस्टम की बात कर रहे थे वो ये है कि वहां पर बाकायदा एक बड़े पैमाने पर ई कॉमर्स इंडस्ट्री कायम की गई है, आप अपनी प्रोडक्ट को खुद ऑनलाइन आकर बेच सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स कायम किए गए हैं, आपको ID दे दी जाती है, आप वहां पर स्टोरेज एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं और अपनी सब्जियां खुद उगाकर किसान अब पूरे चीन में बेच रहे होते हैं, तो किसी थर्ड पार्टी के कॉन्सेप्ट को भी खत्म किया जा रहा है आस्ता आस्ता, ताकि जो मुनाफा है वो एक्चुअल जो उगाने वाले हैं, जो प्रोडक्शन वाले हैं, जो किसान हैं, उनको दिया जा सके। तो ये अभी बात करने को तो खैर बहुत कुछ चीजें थी, लेकिन जो कलीदी बुनियादी चीजें थी वो मैंने आपसे जिक्र की शुगुआंग की, जिसे चीन में सब्जियों का दारुलहुकूमत कहा जाता है।
1: बिल्कुल जी, बहुत यूजफुल कॉन्वर्सेशन रही आज की एहतसाम, और मुझे पता है कि आप जब 3 वीक बाद वापस आएँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने को होंगी जो कि आप 15 मिनट में नहीं बता पा रहे हैं। खैर, नेक्स्ट वीक के लिए इस चीज़ को रखते हैं,
0: लेकिन हम करेंगे इंशाल्लाह, हम कोई ऐसा सिलसिला भी रखेंगे, क्योंकि जो जो आप पढ़ते हैं रुखसार नॉर्मली और चीजें देख और देखना, ये दो अलग चीजें मुझे अब समझ में आई हैं, क्योंकि जब आप जाकर किसी जगह को देखते हैं तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है वो एक बड़ी डिफरेंट होती है बताने के लिए, और जो कुछ आप कर रखे हैं गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले और खुले कपड़े पहनने की कोशिश करें ताकि आपके जिस्म का दर्जा हरारत भी ठीक रहे और आप बीमार ना हो।
1: ओके जी, थैंक यू सो मच एहतिसाम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप भी, अल्लाह हाफिज. और ये था आज का सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान, सपोर्टेड बाय HFT पाकिस्तान, हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान, जिसमें एहतिसाम हमारे साथ मौजूद होते हैं, एहतिसाम उल हक चाइना मीडिया ग्रुप उर्दू सर्विसेज से. हमें ज्वाइन करते हैं चाइना बीजिंग से लाइव. और आज का सेगमेंट यहीं पे खत्म हुआ जाता है जी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक थर्सडे को इस सेगमेंट में दोबारा से मिलेंगे, एहतिसाम भी होंगे. और हमारे पास एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक है, इस कमर्शियल ब्रेक को लेते हैं, वापस आते हैं. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hamed Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hamed Diamond Glow Bleach Cream.
4: This program is brought to you by
5: Bankal Habib, rishta bharose ka.
6: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन.

0: जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंग जुकाम दिल जी तकलीफ अध मथे जो सूर अखियुनि जी बुखार ॿारनि जो देर सां हलण शुगर दिमागी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
2: GAFM 88
1: नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

a beautiful song. और ये song ना मैंने आते साथ line up किया था. मैंने सोचा ये मैं अब play करूँगी, ये मैं अब play करूँगी. लेकिन ऐसे करते करते ना हम अगले घंटे में पहुँच गए. इस गाने की हर line कितनी accurate है. इसी बात पे मैसेजेस की तरफ चलते हैं. सलाम, कैसी हो रुखसार बाजी? दुआ करो कि मैं 2029 का टॉपर बनूं पब्लिक सर्विस कमीशन के CSSP SP एग्जाम का. हम आपको इनवाइट करेंगे, क्या आप आएंगी? ऑब्वियसली मैं जरूर आऊंगी और इंशाल्लाह आप ये एग्जाम पास कर जाएं. दिल लगा के मेहनत करें, दिल लगा के पढ़ें. कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा आप, तब जाके आप ये अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे. क्योंकि जब तक इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहता है ना, तब तक वो चीज हासिल नहीं कर पाता जिसका उसे जुनून होता है. जुनून को पाने के लिए या किसी चीज को हासिल करने के लिए, किसी जगह पे पहुंचने के लिए, किसी पॉइंट पे आके रुकने के लिए, किसी मंजिल पे जाने के लिए, हमेशा इंसान को अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है. क्योंकि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, हम कभी भी किसी भी चीज को अचीव नहीं कर पाते.

0: मां भाजो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में टाइच क्रिएटिव जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस कयो डायमंड ग्लो भाभी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
2: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसान

0: छा अमा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल कुदरती निखार नरम आई रोशन चेहरे इस्मेंट ग्लो ब्लीच क्रीम एरो जीए होजे हिंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह है मोहब्बत का पैगाम जी ए नेटवर्क सिंध की आवाज़।

रखी बुझ में अजायो अणजाण कदें निकंदा की न की मोहब्बत संदा मान सारे दिल जे दर्द जी अखियुनि मां

वेलकम बैक वंस अगेन. जिंदगी गुलजार है और आरजे रुखसार आपका और मेरा साथ पूरे पूरे एक बार और लास्ट रंग में हम वापस आ चुके हैं जी. और ये जो मोमेंट होता है ये इतनी जल्दी गुजर के हम इसको और हम इसको कुछ बोल भी नहीं सकते. मैं कोशिश करूंगी कि लास्ट रंग की कॉलर्स ले लूं और आप लोगों की कॉल्स को मैं रिसीव करने की कोशिश की लेनी थी और बहुत सारी कुछ पाए हैं, कम कॉल्स ली हैं और मौजूद है मेरे पास.

बाकी जी सांसद कॉमेंट्स मोहम्मद साली लगारी हमें सुन रहे हैं, लटको मोरी से उम्मीद अली लाशारी हमें सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं अब्दुल सद्दार हमें सुन रहे हैं, मोहम्मद हफीजुर रहमान भक्कर से हमें सुन रहे हैं जी, थैंक यू। और इसके अलावा साम भाई का व्हाट्सएप हैंग हो रहा है। अच्छा इस माँ किशोर कहते हैं, असल में दोनों का हैंग नहीं हो रहा था, सिग्नल्स प्रॉब्लम था, जो कि आजकल बहुत नॉर्मल सी चीज के सिग्नल्स प्रॉपर नहीं आ पाते हैं। अब्दुल सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मॉर्निंग्स हो रही है जी, वाओ। के साथ मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है और आपकी और मेरी हम सब चैट होगी इंशाल्लाह अब इस प्रोग्राम में नेक्स्ट वीक मंडे को ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे, सो ना मत भूलिएगा। जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और शाम को दोबारा से होने वाली है 4 to 5 PM तक ऑनवर्ड्स आपका और मेरा साथ रहेगा, सो आपने वो भी सुनना नहीं भूलना, 1 घंटा नॉन स्टॉप। एंड बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी है, ख्वाब पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी। लाइफ सिंपल बट थिंक हाई, सो दिस इज मी आरजे रुखसार साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Michael Habib. Rishta Bharose Ka.
0: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी. मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस. चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम. लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी. मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस. चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: सहकार में फ़ायदो छिकता से नुकसान थन्द है. चीनी सदर शी जिनपिंग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ बदाम भाईवार थे मशवरो दे छो. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात. शी जिनपिंग सदर ट्रंप के ताइवान बाबत खबरदार कदे तो मामले के दुरुस्त नमूने न संभाले वो तो लागापा टकराव तरफ वी सकता. आलमी बहरान हल रुगो सफारतकारी गाल सदर डोनाल्ड ट्रंप चीनी सदर से मुलाकात के कामयाब करार दीदे है. बीजिंग ए वॉशिंगटन जहा लागापा तारीखी बुलंदी तरफ वन वाला. चीनी अमेरिकी सदर में मुलाकात.

दुरुस्त नमूने न संभाले वियो त लागापा टकराव तरफ वधी सघनि था। आलमी बहरान जो हल रुगो सफारतकारी ऐं ॻाल्हियूं आहिनि। सदर डोनाल्ड ट्रंप चीनी सदर सां मुलाकात खे कामयाब करार ॾींदे चयो आहे त बीजिंग ऐं वॉशिंगटन जा लागापा तारीख़ी बुलंदियुनि तरफ़ वञण वारा आहिनि। चीनी ऐं अमेरिकी सदरनि में मुलाकात तक़रीबन 2 कलाक जारी रही।

इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहु ईरान सां जंग दौरान गॾियल अरब इमारतुनि जो ॻुझो दौरो कयो हो। परॾेही ख़बर इदारे जी दावा, इसराइली वज़ीर आज़म जो ऑफिस नेतन्याहु जे यूएई जे ॻुझे दौरे जी तसदीक कंदे चयो आहे त नेतन्याहु ईरान ख़िलाफ़ जंग दौरान गॾियल अरब इमारतुनि वियो हो ऐं हुन यूएई जे सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान सां बि मुलाक़ात कई हुई। यूएई इसराइली वज़ीर आज़म जे गॾियल अरब इमारतुनि जे ॻुझे दौरे जी तरदीद करे छॾी। परॾेही वज़ारत मूजिबि इसराइल सां लॻापा इब्राहिमी मुआहिदे तहत शफ़ाफ़ ऐं ऐलानियल आहिनि, जिन में का बि ॻुझी मुलाक़ात ऐं राब्ता शामिल न आहिनि। ईरान जंग दौरान इसराइली वज़ीर आज़म गॾियल अरब इमारतुनि जो दौरो नाहे कयो। ईरान ख़िलाफ़ साज़िश कंदड़नि जो एहतसाब कयो वेंदो। दुश्मन सां गॾु बीहंदड़नि खे पंहिंजे अमल जो जवाब ॾियणो पवंदो। ईरानी परे वज़ीर अब्बास अराक्षी चयो आहे त ईरानी अवाम ख़िलाफ़ बीहणु बेवकूफ़ी ते ॿधल जुआ आहे। ईरान ख़िलाफ़ दुश्मनी जे लाइ इसराइल सां गठजोड़ माफ़ीअ जोॻो नाहे।

एटमी असासा अगराई जलाए न पर मुल्क जे दिफा जलाए हिन हकवारी जंग में दुश्मन पाक फौज जो सिखारल सबक समूरी जमार याद रखंदो। वजीर आजम शहबाज शरीफ काबीना के खिताब कंदे चयो आहे त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एटमी प्रोग्राम शुरू कयो, नवाज शरीफ मुकमल कयो, दुनिया पाकिस्तान के एक ज़िम्मेवारी एटमी कुवत तौर सुञाणे थी, हुकूमत आवाम के रिलीफ फराहम करण के लिए समूरा वसीला कतब आणे रही है, हक वारी जंग में कामयाबी जो दिहाड़ो भरपूर जोश ए जज्बे से मल्हाया वो। कोकेन क्वीन पिंकी के केस में अहम खबर आई, पुलिस पिंकी के बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जहा तफसील हासिल कर वरता। पिंकी जहा अकाउंट संभालींदड़ अहम जवाबदार जीशान कराची के गुलिस्तान जौहर में गिरफ्तार। पुलिस जरिए मुझे पिंकी की छरुकनी गैंग में पंज मर्द एक औरत शामिल है। अनमोल उर्फ पिंकी मंशियात जो समूरो कारोबार ऑनलाइन हलाइंदी हुई, 20,000 रुपया वठंदी हुई। मंशियात राइडर्स उस जगह से रखी इतला दिनों वेंदो हो जब बुधायल जगह ता मंशियात खणंदो हो। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ पंजाब में भी जांच शुरू। अनमोल उर्फ पिंकी के मुड़स रिटायर्ड इंस्पेक्टर के जांच के लिए तलब कर वरतो। पंजाब पुलिस के जरिए मुझे पिंकी बारे मामले की जांच सीसीडी कर रही है। कोकेन कोइन पिंकी जांच दौरान छिड़काइंद इंकशाफ, एक ऑफिसर से मंशियात के समय गिरफ्तार भाव के रिश्वत वी आजाद करण जो इल्जाम लगे छो। अनमोल जांच गैंग कराची में माहवार 2 करोड़ का मंशियात विक्रो कंदी हुई। लाहौर का मंशियात की सप्लाई लाए इंटरसिटी बसों जो इस्तेमाल किया वेंदो हो। गुलिस्तान जोहर के एक फ्रेंचाइज के रकम मुंतकिल करने के इस्तेमाल किया वेंदो हो। ऑफिसर्स के भी 1 करोड़ रुपया रिश्वत दिनी वेंदी हुई। एक पुलिस अहलकार कामरान से राइडर की आजादी के लिए 1 करोड़ रुपया वरता हुआ जैसे कत्ल करने की भी रिथाबंदी कई हुई।

0: नोटिस वठी नौजवान के आजाद कराइन बी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधाया वेंदो। मीरपुर बठोरो जोग शरीफ समेत सवे गोठन में पीने के पानी जो भी बहरान पैदा थी वो गंजबहर कैनाल में पानी की खोट सबब आबादगार सारे जो फसल भी न पोखे सकिया पीने के पानी की भी खोट पैदा थी वही औरतू बार परे परे वाले इलाकन में पानी भरने से मजबूर।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड क्रीम से जे और दे चार गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से स्किन करे और चमक ऐसी डायमंड स्किन ग्लो ब्लीच।
3: जडे माँ पांजो ख्याल रखन नस्लन ताई हगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
4: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर ख़ानदानी तजुर्बेकार सी डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज माथे जी पथरी ऐं सोई खफ़ अध मथे जो सूर देर सां हलणु ख़ारिश नासारिन जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत सुबुह 9 वगे खां शाम 5 वगे ताईं बरोज जुमे क्लिनिक शेरवानी कीरिया वधीक मशोरे ऐं रात 3997763। मुल्क में लहर जारी सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती बारन बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम 11 खां शाम 4 वगे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाउ तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
5: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण
6: हो GFM 90.8।

ऐं पई नथो पुछां किस्मत सां ऐं कज़ा सां मुक़द्दर सां सिर लॻे जो तूं घर घड़ियूं सजण उन घर ॻोठ शहर सॼे तर सां सिर लॻे गुलाम या गुलाम नौकर सां सिर लॻे।

आसमान जिंदगी से मौत चांद सितारों तक हमसे खुशी तक दिल से दिल तक और जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमें रहमत और बरकत रखे तो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जनाब आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लारकाना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जनाब आप लोगों को पहले से जो है ना मैं थोड़ी बहुत सी बातें बता देती हूँ ताकि आप लोग ये चीज समझ जाएंगे जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले हैं पढ़ने वाले हैं तो वो किस तरह से

जरा प्रोडक्ट को सिलेक्ट, तो यही आपकी कंफ्यूजन दूर करी करी ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए पेश किया जा रहा है। बिल्कुल इसी प्रोग्राम में अगर आप हमारे साथ मौजूद प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो क्या तरीकेकार फॉलो करेंगे ये भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन साथ साथ यहाँ पर जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, प्रेजेंट द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्धरामस नाई होगा। तो बिल्कुल जी आपकी सिद्धरा आप लोगों के साथ साथ ब्यूटीफुल से प्रोग्राम है आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल जी रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ साथ मौजूद रहने के लिए, प्रोग्राम में बातें करने के लिए और प्रोग्राम में खूबसूरती के राजों को जानने के लिए। डियर लिसनर्स, अंधे फहालत उनके सही आपकी हालत है, उम्मीद है सदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुकून मोड के साथ सुकून प्रोग्राम का इंतजार, आपके जो इंतजार की घड़ियां एंट्रियां मारी ली हैं, आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं उसकी दिलाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बज के आप रहने वाला ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक हमारे पास मौजूद होते हैं। और इन 2 घंटों में हम इन शाली बातें कर लेते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा वाली बातें करते हैं, और यहाँ पर अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, आपके फ्री होकर हमारा इंतजार करे थे, अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पियोंगी, यानी कि लड़का में भी सुनिए आपको कहीं। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं, तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो, आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला, बिकॉज जाली रे आली सदराली बॉ 440 की समय लाने के लिए। तो बिल्कुल 440 की समय लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। ओके जी, सो आगे से प्रोग्राम किया जाएगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कलाम सुनती है, उसके बाद हम ना जैसे ही वापस आते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों को आप सुन रहे हैं व्हाइट ब्यूटी प्रोडक्ट, ये पूरी 3 बजे तक आपका हम

बातें बहुत ही ज्यादा शानदार और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड की व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आपके सिद्रा यहाँ पर आप लोगों के साथ साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे और जनाब अपने होने का एहसास लाते जाएंगे वो कैसे करेंगे जनाब वो बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जरा आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है उसकी जानेबाज आते हैं। तो आज के प्रोग्राम में जो मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है वो ये होने वाला है कि आज आप मुझे ये बताइए जरा, हाँ जी, कि गर्मियों में आप लोग भरोसा सबसे ज्यादा किस पर करते हैं। यानी गर्मियों के अंदर वैसे भी कहते हैं ना भरोसा जो है वो किसी पर भी नहीं होता, लेकिन गर्मियों में आप भरोसा सबसे ज्यादा किस पर करते हैं। और इसके साथ साथ अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो किस तरह से ज्वाइन करेंगे जनाब, आप हमें अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिग्नल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए 888-1 पर अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जनाब जिये लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज और जिये लाड़काना एडिट अगर आप इजीली हमारा पेज मगर वहाँ पर आप जैसे प्रोग्राम मिल जाते हैं जैसे कमेंट करें को लाइक कीजिए, कमेंट के साथ पोस्ट को जरा शेयर करते जाइए और दीजिए ताकि सबको पता चले कि खूबसूरती के राज। तो बिल्कुल जी खूबसूरती के राजों को जाने और यहाँ पर आप लोगों से मैंने पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि गर्मियों में आप सर किस पर करते हैं। वैसे तो खूबसूरती के मामले में देखा जाए तो आप लोगों का भरोसा जो ना वो ऐसा है कि आप ये कहते हैं कि गर्मियों का हम ब्यूटी क्रीम जो हो नाइट क्रीम में कहा जाता है जने, तो अगर आप नाइट क्रीम में गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं तो लोग अक्सर मैंने देख रहे होते हैं कि भाई नाइट क्रीम में जो होती है ना गर्मियों में जो गर्मियों में ज्यादा मजा नहीं आता लगाने में। तो ऐसा सीन है जब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट हो और आपकी स्किन की खूबसूरती को मेंटेन करें।

आप लोगों को खूबसूरती भी मिले और आप लोगों के चेहरे की जो स्किन है ना वो प्रोटेक्ट भी रहे सन से, सूरज से और उसके नुकसानदायक किरणों से। और उसके अलावा है जनाब हमारे पास डॉक्टर पिंपल नाम से ये एक्ने के लिए ट्यूब। डॉक्टर पिंपल नाम से अगर आप एक्ने के लिए ट्यूब इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर आपके चेहरे पर दाने हैं तो वो अब खत्म होने वाले, क्योंकि आपके पास डॉक्टर पिंपल ट्यूब मौजूद है। तो डॉक्टर पिंपल का ट्यूब आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके चेहरे की एक्नेस खत्म हो जाए। उसके साथ साथ हमारे पास जो है डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी मौजूद है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की खूबसूरती के लिए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको मिल रहा है डी स्किन का फेस वॉश। ये बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, यानी जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताती रहूंगी वो बहुत ही अलग क्वालिटी के होंगे। बिल्कुल सही, आप जरा आराम से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको जो चीज बताई जा रही है तो उससे फायदा क्या आप लोगों को मिलेगा। बस ऐसे होते हैं बहुत से लोग जो बस सुनते हैं और वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो भाई जान पहले सुना करें, समझा करें, उसके बाद ही जो है ना आप अमल कर लिया करें। ओके सो यहाँ पर प्रोग्राम वाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो में यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि गर्मियों में आप किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और यासीन गुटाड़ो भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं सकरन से। वालेकुम अस्सलाम प्यारा भामा, ठीक था बुधा की आए हो, ठीक ठाक मजे में। और मीरपुर खास से अब्दुल्ला महरे के अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम पाजी, वाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, सॉन्ग सुनाए फायज अली का। बिल्कुल जी फायज अली आज आपकी फरमाइश के ऊपर आएंगे। और उसके अलावा नूर संतुनियो भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं बदीन से। गुड आफ्टरनून एवन आई स्टे लवली यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, आमीन जी आमीन। यूनिस खोड़ो हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ हैं, हिदायतुल्लाह आपको भी वेलकम हो गया जी। आदिल हुसैन हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। आदिल लिखते हैं, मोहब्बत देख ली हमने जमाने भर के लोगों की, जहाँ कुछ दाम ज्यादा हो वहाँ इंसान बिकते हैं, क्या बात है। और उसके अलावा नूर सिंतुनियो भाई कहते हैं कि अदी सदरा आपका वाइट एश एन डी ब्यूटी शो बड़ा सुपर डुपर है, बहुत शुक्रिया जी। आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिएगा, आपको प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। और उस्मान बलूच हमारे साथ मौजूद है, हेलो चाचा खाले चुने जो आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। मोलाई जबार चगड़ हमें सुन रहे हैं, माशाल्लाह वीआईपी प्रोग्राम, थैंक यू। इकबाल आशारिया हमें सुन रहे हैं, इकबाल आशारिया हमें मीरपुर खास से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम स्वीटी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं, मजे में। और उसके साथ साथ टॉपिक को फॉलो करते जाइए, पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन कीजिए। यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे, क्योंकि आपका हमारे साथ पूरी पूरी 3 बजे तक है। तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग, व्हाइटिश एंड स्किन ब्यूटी शो।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा।

0: एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हाँ हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पांजो मुकम्मल चेकअप करायो होम्योपैथिक इलाज से कुदरती शिफा हासिल करो सेहत तंदुरुस्ती की नई राह से गामजन थो तो देर छो अवे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो जिगर गुर्दे पिते की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखिन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज किया होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई बरोज जुमो मोकल है एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण मशोरे ते जलाए 0327 99 84 760 63।

आ रहे हैं, आपके फीडबैक्स हैं, आप लोगों के मैसेजेस हैं जो कि हम पढ़ते रहेंगे प्रोग्राम में, आप लोगों के साथ बातें करेंगे। लेकिन मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है उसकी जाने भी जरा आते हैं। तो मैंने आज ये कि मौसम गाला बिल्कुल गर्मियों के मौसम में भरोसा कंदा यो तो मुख्य बुधायो पया उन सा करो कर तवां से लाए गाना आइन लिस्ट में बिल्कुल असा गाना बुधंदा सी आई तवां जो मैसेजेस आइन तवां प्यार भरियो कचरियो कयो पया बाबा बिल्कुल तवां जे मैसेज तरफ अचू था। ओके सो फेसबुक वाला जेकी मानू आइन पोस्ट के लाइक एंड शेयर कंदा हलो बाबा जल्दी जल्दी लाइक एंड शेयर कयो पैसा कौन लगना आइन सफा मुफ्त वारो कमाए सो तवां लाइक एंड शेयर कंदा हलो आइन वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कंदा हलो तवां जे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल आइन त डाडी भली गाला अगर ना आइन अवेलेबल त पोई तवां डायल कंदा हलो 03 15 799 0595 ये नंबर तुम डायल करो पानी करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइंदा रहो ठीक है। उनसा गरो गर जनाब हिते अमाजा मैसेजेस आइन मैसेजेस बिल्कुल पढूं था पर ही वारो सॉन्ग असाइन लिस्ट में मौजूद है सो असा ही वारो सॉन्ग बजंदा सी डाडो वीआईपी गानो आहे तमा के वणदो न वणे त पैसा वापस करना सी सही है।

ओ करी नजीर खुर्सो में सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, वेलकम हो गया भाई का। और आदिल हुसैन कहते हैं टॉपिक एंसर, खतरा गर्मी हो या सर्दी हो मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, लोग इधर की बातें उधर बताते हैं। ये तो सही बात है वैसे। आशिक खास के लिए मेरे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। आदिल कहते हैं कि मगर आप पर भरोसा करते हैं हम, कि मेरे ऊपर भरोसा करें क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के फायदे की बात बताती हूँ। प्रेम चंद भाई हमारे साथ मौजूद है।

ज़हीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं. माय नेम इज़ ज़हीर अब्बास फ्रॉम मोरो. सिस्टर आपका शो वेरी नाइस है. सिस्टर सॉन्ग सुनाइएगा मुनव्वर का. मेरे फ्रेंड्स को मुनीर अहमद सुधीर और अहमद को चलें जी. ठीक है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आपकी पसंद का हम गाना सुनेंगे. और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं. बताएं जरा वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं, इस्तेमाल करने का इरादा है या नहीं, बताएं तो जरा कैसे शर्माना. सुनो कहते हैं कि शॉपिंग गर्मी में हम आप और आपके शो पर भरोसा करते हैं, सच्ची बताएं. वासु भाई हमारे साथ मौजूद है. हेलो वासु भाई. मोहम्मद सालेह लगारी हमारे साथ मौजूद है. मोरो से आप हमारे शो सुन रहे हैं, मोरो वालों को वेलकम जी. एहसन अली यार बानी हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम. एहसन शाला खुश आयो.

बिल्कुल जो आप प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइटिश इंडीज के ब्यूटी शो के सिद्रा के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बता दी जा रहे हैं। और उसके अलावा वासु भाई कहते अदी सिडो अजो खां पोई तवा जे प्रोग्राम में रोज हाजिरी भरना भरनी पवंदी। हां जी बिल्कुल रोज दिना कयो। और ये हमारे साथ है मुलाजिम भाई, आपको भी वेलकम हो गया। सनाला भरोई हमारे साथ में मौजूद है। किशोर भाई वालेकुम अस्सलाम अदा खुशाही मानी वानी नहीं खाइंदा से अस नाश्तो करी नहीं आयो। केड़ा जगह गानों ने मिलो कुटकी से आके दाद आयो बहुत ही प्यारा गाना। और एक और गाना भाई हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि होने वाला है फायजा अली की आवाज में और मुमताज मोराई की आवाज। फायजा अली से गाने जी तमा हेडी सारी रिक्वेस्ट कना है, सो ही गानो ने सबनी के डेडिकेट हुंदो। आई प्रोग्राम में अगर तमा से सगट मौजूद है तो बाबा मुखे यू भी बुधाइना हेलो तो तम हां वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मां केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया केड़े प्रोडक्ट इस्तेमाल करने जी बारे में तमा सोचो है।

वास साईं वा ॾाढो भलो गानो ॿुधो पिया. हीउ प्रोग्राम आहे जना वाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड कयो वञे पियो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट. जिताबनि सां तव्हां इस्तेमालु कंदा तव्हां ख़ूबसूरत थी वेंदा ऐं तव्हां सुहिणा बि थी वेंदा. सही आहे. अच्छा, यहां पर हमारे साथ हैं जी हिदायत ओके जी, आपका बहुत शुक्रिया. और यहाँ पर महर इरफान सियाल साहब भी हमारा शो सुन रहे हैं. तो महर इरफान सियाल साहब, आपको बहुत शुक्रिया वेलकम के साथ साथ. ओके जी, पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए. दर्दी दिल कैरी के टॉपिक चंदा, मैं तो हवा पर भरोसा करती हूँ. अच्छा, ये तो लेटेस्ट न्यूज है. हजार कंजो तो हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम असलम हजार भाई, चाला खुश आयो.

आदिल हुसैन कहते अमी पूछ रही है आपको बलोची में बात करनी आती नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं अली मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है हेलो दद्दल कहती है कि हाँ याद आया तुम पर और शो पर भरोसा है मुझे गर्मी में और कुछ अच्छा लगे ना लगे लेकिन तुम्हारा शो बहुत अच्छा लगता है जय हुदा अच्छा हजार भाई कहते हैं कि हम आप पर और वाइट एश के लवली क्रीम पर भरोसा करते हैं क्या बात है जी वाइट एश लवली क्रीम जी तो बाबा अलग कुछ अलग है वाइट एश लवली क्रीम जी मानू लगान पाया ना सफा सोना थी ना वन पाया जो तो वाइट एश लवली क्रीम तवाजी खूबसूरती के बधाई भी थी तवाजी खूबसूरती के जो मेंटेन भी रखी थी तवाजी खूबसूरती के जो ना प्रोटेक्ट भी करे थे सो हिकड़ी क्रीम के अंदर तवा एतरा सारा फायदा मिलन था जालमो तुम वो चुन पाया ये हर स्किन टोन जी लाया ही तवाजी लाइकड़ी फेयरनेस क्रीम है जैसे तुम डी में लगाओ रात में लगाओ तवाजी मर्जी है हर एज वो मानू लगा सके तो बाबा एडो मजेदार प्रोडक्ट मौजूद है तुम जरूर ट्राई कर जो ठीक है अच्छा अली मोहम्मद हमें सुन रहे हैं अली मोहम्मद भाई आपका बहुत शुक्रिया अहमद हमारे साथ है अहमद हाला वालेकुम अस्सलाम अनवर भाभी हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम कहते व्हाइट एच डी स्किन प्रोग्राम करने थे वेलकम क्यों था वाह सही वाह वेलकम पोस्ट के लाएगा शेयर करना हलो ठीक है इतनी कंजूसी न करना गयो और यहाँ पे टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक की जानब जाते हैं और इसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे तो आपने बस कहीं नहीं जाना हमारे साथ मौजूद रहेगा सुनती रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे तीन बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहने वाली हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे तो सुनते रहिए प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए खूबसूरत होते रहिए

पेंगुइन अनमोल उर्फ पिंकी के केस में नवन इंकशाफन ने गिरफ्तारियों जो सिलसिलो जारी पिंकी जो माहवार बिन करोड़न का वधिक जी मंशियात कराची में विक्रो करण जो एतराफ ऑफिसर्स के करोड़ रुपए की रिश्वत देने जो भी इंकशाफ कराची पुलिस पिंकी जा अकाउंट संभालींदे जवाबदार दिशान के गुलिस्तान जोहर मां गिरफ्तार करे वरतो पिंकी जांच दौरान मंशियात बाबत समूरी डेटी लेती ऑनलाइन करण जो भी एतराफ कर पुलिस पिंकी के बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो तफसील भी हासिल करे वरता अनमोल उर्फ पिंकी पुलिस के जांच दौरान बुझाया तो संदस गैंग कराची में माहवार बिन करोड़न का वधिक जी मंशियात विक्रो कंदी हुई लाहौर का मंशियात की सप्लाई के लिए इंटरसिटी बसन जो इस्तेमाल किया वेंदो हो ऑफिसर्स के बिन करोड़ कराची में मंशियात विक्रो कंदड़ औरत की गिरफ्तारी तेदारन की सारा थियन घुर्जे कोताहन की भली निशानदेही कयो पर सुठे कम की तारीफ भी थियन घुर्जे सिंध के सीनियर वजीर सैदुलिना मेमण चाहिए मंशियात विक्रो कंदड़ औरत के बिना हथखड़ी अदालत में पेश कंदड़ अहलकार के मुअतल किया वो है सिंध में अमन अमान की सूरतहाल भी बेहतर है समूरा हाईवेज महफूज हैं सूबे में सनत लगने के लिए हुकूमत जमीन भी मुफ्त में डेई रही है चारा भुट्टो भी हलदड़ महीने ही खोली वेंदी

कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी खिलाफ पंजाब में बे पुलिस जांच शुरू कर छी। सीसीडी अनमोल और पिंकी के मुड़स रिटायर्ड इंस्पेक्टर के जांच के लिए तलब कर वरतो। पंजाब पुलिस के जरिए मुझे पिंकी बारे मामले की जांच सीसीडी कर रही है। पिंकी के कराची का लाहौर भी आने सके तो

एटमी असां सां अगराई जे लाइ न पर मुल्क जे दिफ़ा जे लाइ आहिनि। हक़ वारी जंग में दुश्मन पाक फ़ौज जो सेखारियल सबक समूरी जमार यादि रखंदो। काबीना इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो एटमी प्रोग्राम शुरू कयो ऐं नवाज़ शरीफ़ मुकमल कयो। दुनिया पाकिस्तान खे ज़िमेवार एटमी ताक़त तौरु सुञाणे थी। हुकूमत आवाम खे रिलीफ़ फ़राहम करण जे लाइ समूरा वसीला क़तब आणे रही आहे। हक़ वारी जंग में कामयाबी जो ॾिहाड़ो भरपूर जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। सहकार में फ़ाइदो ऐं छिकतार सां नुक़सान थींदो आहे। चीनी सदर शी जिनपिंग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे मुख़ालिफ़त बदिरां भाईवार थियण जो मशवरो ॾेई छॾियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी चीनी सदर शी जिनपिंग सां मुलाक़ात। शी जिनपिंग सदर ट्रंप खे ताइवान बाबति ख़बरदार करे चयो त मामले खे दुरुस्त नमूने न संभालियो वियो त लाॻापा टकराव तरफ़ वधी सघनि था। आलमी बुहराननि जो हल रुॻो सिफारतकारी ऐं ॻाल्हियूं आहिनि। सदर ट्रंप चीनी सदर सां मुलाक़ात खे कामयाब करार ॾींदे चयो आहे त बीजिंग ऐं वॉशिंगटन जा लाॻापा तारीख़ी बुलंदियुनि तरफ़ वञण वारा आहिनि। चीनी ऐं अमेरिकी सदरनि में मुलाक़ात तक़रीबन 2 कलाक जारी रही। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान सां जंग दौरान गॾियल अरब इमारतुनि जो ॻुझो दौरो कयो हो। परॾेही ख़बरूं इदारे जी दावा। इसराइली वज़ीर आज़म जे ऑफिस नेतन्याहू जे यूएई जे ॻुझे दौरे जी तस्दीक कंदे चयो आहे त नेतन्याहू ईरान ख़िलाफ़ जंग दौरान गॾियल अरब इमारतुनि वियो हो ऐं हुन यूएई जे सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान सां बि मुलाक़ात कई हुई। यूएई इसराइली वज़ीर आज़म जे गॾियल अरब इमारतुनि जे ॻुझे दौरे जी तरदीद करे छॾी। परॾेही वज़ारत मूजिबि इसराइल सां लाॻापा इब्राहिमी मुआहिदे तहत शफ़ाफ़ ऐं ऐलानिया आहिनि जिन में का बि ॻुझी मुलाक़ात ऐं राब्ता शामिल न आहिनि। ईरान जंग दौरान इसराइली वज़ीर आज़म गॾियल अरब इमारतुनि जो दौरो नाहे कयो। ईरान ख़िलाफ़ साज़िश कंदड़नि जो एहतसाब कयो वेंदो। दुश्मन सां गॾु बीहंदड़नि खे पंहिंजे अमल जो जवाब ॾियणो पवंदो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त ईरानी अवाम ख़िलाफ़ बीहण बेवकूफ़ी ते ॿधल जुआ आहे। ईरान ख़िलाफ़ दुश्मनी जे लाइ इसराइल सां गठजोड़ माफ़ीअ जोॻो नाहे। सकरन वेझो भाणे जे हथां मामो क़तल। ॻोठ जतो मक्सी में जवाबदार मिस्री जमाली पंहिंजे मामे शम्स जमाली खे क़तलु कयो। पनवागल भरसां ॻोठ चुंघा में कलोड़ा बिरादरी जी बिंदुरनि में मामूली ॻाल्हि तां छेड़ो। सलीमुल्ला कलोड़ो मारिजी वियो। ॿी धुर जा 3 ॼणा ज़ख़्मी थिया। नगर पालिका में सिंधी हारी तहरीक अवामी तहरीक पारां वधंदड़ महांगाई ख़िलाफ़ रैली। अवामी हाउस खां मिस्किन जान खान कोसो चौक ताईं रैली कढी वई। महांगाई ते ज़ाब्तो आणे अवाम खे रिलीफ़ फराहम करण जो मुतालबो। नवाब शाह में बि शहरनि जो महांगाई बदम। नीअं लोड शेडिंग ख़िलाफ़ एहतजाज। शहरी ताज जे सॾ ते इस्पताल रोड खां रैली कढी शहर जो गश्त करण बाद प्रेस क्लब अॻियां धरणो हयो वियो। हुकूमत खां बिजली जी लोड शेडिंग ख़तमु करण ऐं महांगाई ते ज़ाब्ते जो मुतालबो। ऐं सिंध में कारा इल्ज़ाम हेठि औरतुनि जे क़तल वारनि वाक़नि ख़िलाफ़ लाड़काणो में मुख़्तलिफ़ शोबनि सां तालुक रखंदड़ औरतुनि शागिर्दनि शागिर्दाणनि ऐं सियासी समाजी धुरियुनि जी रैली। बेगम नुसरत भुट्टो गर्ल्स कॉलेज खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई। औरतुनि जो क़तलाम रोकण जे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
2: This program is brought to you by
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखिन जी ख़ारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सां हलन शुगर दिमागी कमजोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। महरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो। बाहर निकरण वक्त कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का ढिलो ऐं हल्के रंगन वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाही लाइ पेश कयो वियो।
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

होता है, वो पोल्यूशन होता है, वो जर्म्स होते हैं, तो वो आपके चेहरे पर जो प्रोडक्ट आप लगा रहे होते हैं ना, तो वो बस आप लेप कर रहे होते हैं, बाकी तो वो असर नहीं दिखा रहा होता अपना। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट अपने चेहरे पर अप्लाई करें तो काइंडली करें कि आप फेस वॉश कर लिया, नोने पुतर बन जाए, अच्छे अच्छे क्लीन होकर फिर आप बिल्कुल जी क्रीम लगाया करें, ताकि आपके चेहरे पर परफेक्ट वाला निखार मिले, आपको खूबसूरती मिले, वो वाली जो आप हासिल करना चाहते हैं।

और जनाब, अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो फिर आप डायल करेंगे 03-15-799-0595. ये नंबर डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाइए और वहां से जाकर परचेज करते जाइए, क्योंकि आपकी खूबसूरती अब आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर है। तो जाइए और परचेज कीजिए, अगर नहीं अवेलेबल तो अवेलेबल कराइए, ये भी आपके हाथ में है। ओके जी, तो प्रोग्राम में यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद थे, मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि गर्मियों में आप लोग भरोसा किस पर करते हैं। गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है, हम जरा थोड़ा सा ना गाना सुन लेते हैं और गाने के बाद जो है ना हम आप लोगों की कुछ कॉल्स भी पिक करेंगे, ठीक है। और साथ साथ आपके मैसेजेस की जाने भी आते हैं, पैनल पर आपका काफी सारा रश हो चुका है, तो पैनल की जाने बातें ये गाना हमारे पास मौजूद है। एड़ो हिन दिल ते मिठा छड़ो ते जादू करे तुझे तो फिर सा मतो मुझो तो फिर अच्छा गाना है।

ये गोट मोहम्मद तैयब थिबू खां बिबुला थिबू हैं तवां जो शोवीरी नाइस आहे तवां खुश रहो हमेशा तवां भी खुश रहो प्यारा भाव। अच्छा ये हमारे साथ हैं जी सलाम आरजे सिदरा क्या हाल है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ आप बताएं आप कैसे हैं। ये हमारे साथ हैं इमरान अली बिरोही भाई आपका बहुत शुक्रिया। प्रिंस अहमद अली रिंद हमारे साथ हैं फ्राम अहमद आबाज वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान पाक आर्मी। स्वीट शो प्लीज रहमान मुगल का कोई भी सॉन्ग लगाइएगा। हाँ जी ये फरमाइश आपकी रह जाती है, कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश ना रहे, लेकिन अगर रह जाती है तो फिर नाराज मत हुआ।

अच्छा ये कश्यप कहती है हाय आपी, आप कैसी हैं? गुड आफ्टरनून, आज मेरी सिस्टर माविजा की हैप्पी बर्थडे है, उसके लिए अच्छा सा गाना चलाइएगा। जी जी ठीक है ओके ओके। और उसके अलावा माविजा को बोलिए कि वो भी जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू करे। और उसके अलावा कश्यप कहती है सिद्रा, ओ सिद्रा कहती है लाजवाब है हमारी प्यारी आपी सिद्रा मुस्कान, आप ही आपका शो बहुत लाजवाब होता है, हम आपका बहुत शो पसंद करते हैं, बस हमारी आंख जो है ना हर नए दिन को घड़ियाल पर होती है कि कब एक होगा आपी आएगी, मुझे आपका बहुत इंतजार होता है, बहुत ही आपी कल आपको मेरी तरफ से छुट्टी है ओके ओके ओके, सुभाने कश्यप की तरफ मुझे छुट्टी अथवा बुधी छोड़ो। अच्छा गोट मोमन थे वो कहाँ पे बोला थे, वो कहते हैं सांग बुद्रा जो सपना सपना तुझा सपना इंद्र अचे तो दिसा।

वाह साईं वाह, भलो गानो आ आई तमाके वणंदो हुंदो। अच्छा मर्शद माधुरी अदी जी, हमारे दोस्तों को सुपर रिजल्ट मिला है, तो अब मैं, आतिफ, मंठार, शायान, राहुल, यासीन और आकाश, हम अब साथ में। ओके ओके जी, सारे लगाइएगा। वैसे कौन सा प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, देपाल भाई बताएं तो। और लिखते हैं, समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। सलाम अदीजी, नाइस शो, शानदार प्रोडक्ट से व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, गुड ऑल प्रोडक्ट्स एंड यूज कर रहे हैं लवली ब्यूटी एंड सोप को भी इंजॉय कर रहे हैं आप हमारा शो भी। थैंक यू जी, थैंक यू। वैसे हाँ, ये लवली क्रीम का तो जलवा ही कुछ अपना है, तो जो लोग इस्तेमाल करें वो बिल्कुल यही कह रहे हैं, तो आप भी इस्तेमाल कीजिए जेके मानो अन्य रह जनता सही। Yeah.

अच्छा इरम भी हमारे साथ मौजूद है। इरम आपका भी बहुत शुक्रिया, वेलकम कहती है। सिद्रा जवाब है अल्लाह पर एंड चले ये भी अच्छी बात है। अदी जी एसी पर भरोसा नहीं, लाइट या सोलर पर भी, पर एसी नहीं, एसी ने तो एसी एसी की होती है। बिल्कुल ये सही बात है, वैसे एसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और बाकी आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर भी आप भरोसा कर सकते हैं। तो ये जो भरोसे वाली बात होती है ना, ये थोड़ी बहुत जो है ना वो देखा जाए तो कभी कभार इंसान को जो है ना सही रास्ते पर भी ले आते हैं, क्योंकि सही भरोसा करना आप लोगों के लिए सही साबित होता है। जब आप सही इंसान पर भरोसा करते हैं, सही चीजों के ऊपर भरोसा करते हैं, तो यहीं पर आप लोगों के लिए जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम लेकर आए हैं ताकि आप लोग सही प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा कर सके और सही प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सके ताकि आप लोगों की खूबसूरती जो है ना वो बढ़ती जाए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए अवेलेबल है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई बीट्स मौजूद है जनाब। विटामिन ई बीट्स पाकिस्तान में थोड़े से प्रोडक्ट जैसे हैं जिनके अंदर जो है ना विटामिन ई बीट्स डाले गए हैं और उन्हीं में डी स्किन ब्यूटी

क्रीम भी शामिल है। तो जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करें, साथ साथ माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन से तैयार शुदा है। दो रातों के इस्तेमाल से आपको रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है, तो आप जरूर से ट्राई कीजिएगा और साथ में डी स्किन का फेस वॉश भी लगाइएगा ताकि आपको रिजल्ट मिले बहुत ज्यादा वाले। और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं देन आपने डायल करना है 03-15-799-0595। अच्छा जयपाल भाई, बस गर्मियों में तो गुजारा हो ही जाता है भाई, गुजारा तो करना पवंदो है भले कड़ो भी मौसम हो जाए। इतनी रात को चलिए ठीक है, एंजॉय कीजिएगा। और ये कहते हैं इमरान अली बिरोही भाई, टीचर क्या हाल है आपका? आपका जवाब है सर्दी हो या गर्मी, हमारा भरोसा अल्लाह पर है और किसी पर नहीं। ये तो अच्छी बात आपने कर दी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जी। और उसके अलावा फेसबुक वाले लोग हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बताएं जल्दी से। अच्छा किशोर भाई क्या कहते हैं कि मानो हर चीज ते भरोसो करे सगे थो पर इंसान ते न करे। शायद सही गाना।

अच्छा ये सिंगार अली जमाली हमारे साथ है आई एम ओके जी, आपने हमें सिंध न्यूज HD से ज्वाइन किया है, जियो फखर सिंध न्यूज से। अच्छा जी, चले बहुत शुक्रिया, आप CEO हैं वहाँ के, क्या नाम है आपका, सिंगार अली जमाली, बहुत शुक्रिया, वेलकम आपका। और सुनाओ, आप सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाइए, वहां से नाम लेके तलब कीजिए, आपको नहीं मिल रहे तो जो नंबर आपको बताया जा रहा है उसके ऊपर रब्ता करते रहिए और अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराते रहिए। स्मार्टो गोपांग भी हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल जी, आपके मैसेजेस कॉमेंट्स पढ़ते हैं, जरा सा सब्र किया करें और यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88 नेटवर्क। आप सुन रहे हैं व्हाइट एश इंडिया स्किन ब्यूटी शो।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदी हंडलो डी स्किन ब्यूटी ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हाँ हैरत अंगेज ए जदीद मशीन जरिए पांजो मुकम्मल चेकअप करायो होम्योपैथिक इलाज सा कुदरती शिफा हासिल करियो सेहत ए तंदुरुस्ती जी नई राह ते गामजन थियो तपोए देर छो अवां जे पांजे शहर सकरडमी मशहूर व मारू खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो ए जिगर गुर्दे पित्ते जी पथरी ए सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ है अधमथे जो सूर अखिन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सबनी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 खां शाम 5 ताईं बरोज जुमो मोकल आहे एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण वधिक मशोरे ए 0327-99-84-763

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: नेटवर्क सिंध की आवाज
2: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसान

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: किसाननि खे आलमी दिन पर सोना की जानिब

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे मा पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

जी चाचा खालिद बिल्कुल दुआ करेंगे आपका, मैंने कमेंट देख लिया था, परेशान ना हो आप, बहुत सारी दुआ है। अच्छा अरिबा कहती है, ओ बाजी जवाब है, मैं अपनी प्यारी दिलबर दोस्त भाभी इरम पर भरोसा करती हूँ और प्यारी भाभी इरम की। अच्छा चलें अच्छी बात है माशा, या मोहब्बत ताजी कायम दायम रहे सैया।

तव्हां प्रोग्राम में तव्हांखे ख़ूबसूरती जो ॻाल्हियूं ॿुधाई थी आहियां ऐं तव्हांखां मालूम बि कंदा आहियो त तव्हांजे कहिड़े कहिड़े सिटी में कहिड़े कहिड़े शहर में कहिड़े कहिड़े ॻोठ में जेका आहिनि हीअ प्रोडक्ट अवेलेबल थिया आहिनि ऐं हिननि प्रोडक्ट में शामिल आहे वाइट एज जा प्रोडक्ट आहिनि जनाब जेके खोड़ सारा प्रोडक्ट आहिनि असां गॾो गॾु डी स्किन जा प्रोडक्ट आहिनि सो अगरि तव्हां वाइट एज जा प्रोडक्ट इस्तेमालु करणु चाहियो था या फिर तव्हां इस्तेमालु कयो पिया या तव्हां इरादो कयो आहे ख़ाली त तव्हां बिल्कुलु पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो उन खां अलावा वाइट एज जी लवली क्रीम त तव्हां सभु लाज़मी लॻाइजो ठीकु आहे वाइट एज जी जेका लवली क्रीम अथव न सफ़ा ज़बरदस्त क्वालिटी जी प्रोडक्ट अथव सो तव्हां ट्राए करे ॾिसजो इहे पर्सनली मां बि इस्तेमालु कंदी आहियां जेके ख़ासि करे माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंखे कोई कमु हूंदो

यानी कि बाहर निकलना आहिनि, जॉब करना आहिनि, या फिर पढ़ंदा आहिनि, स्कूल वञो था, कॉलेज वञो था, या फिर तव्हां ऑफिस वञो था, अहिड़ी सिचुएशन में तव्हांखे जेको आहे न अहिड़ो कोई प्रोडक्ट खपंदो आहे जेको तव्हांजी स्किन खे ख़ूबसूरत बि बणाए ऐं तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त बि करे। उन में जनाब वाइट एसी लवली क्रीम बेस्ट आहे। सो तव्हां वाइट एसी लवली क्रीम लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो। मां पाण इस्तेमालु कंदी आहियां, तो तव्हांखे ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलंदा जनाब। ट्राए करे ॾिसजो, मज़ो न अचे पैसा वापसि, मज़ो अची वेंदो। ओके, सो लाज़मी लॻाइजो। हुन खां अलावा वाइट एज जा फेस वॉश आहे ऐं सोप आहे। तव्हां फेस वॉश लॻाइण वारा माण्हू आहियो त तव्हां फेस वॉश लॻायो, तव्हां साबुण लॻाइण वारा माण्हू आहियो त तव्हां साबुण लॻायो। बाबा ॻाल्हि एतिरी आहे, सम्झो छो न था।

भी बहुत ही प्यारा गाना आप एंजॉय कर रहे हो, साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम टू दानी, क्या हाल है? मैं भी आपके साथ साथ नाइस शो, सलाम टू निदड़ी एंड ऑल क्यूट लड़कियां। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम सबकी जानिब से, हमारी लुबी हमारे साथ मौजूद है। लुबी, वेलकम करते हैं आपको। और इसके अलावा ये निदड़ी कहाँ है वैसे? अच्छा, वफा शहजादो मक्सी भाई हमें सुन रहे हैं लाड़काना से, वेलकम कहते हैं जी प्यारे भाई को। शहबाज भी हमारे साथ मौजूद है, हेलो शहबाज।

गाना भला लाया है। अच्छा जयपाल भाई कहते हैं कि हम लवली क्रीम जरूर यूज करेंगे, डेफिनेटली एग्री हैं। मैंने सब दोस्तों को रात को कहा था मैं यूज करूंगा जनाब अदी जी। ओके थैंक यू। ओके बिल्कुल जयपाल भाई, लवली क्रीम जो है ना वाइट एज की, ये तो आप जरूर ट्राई कीजिए। लड़के लड़कियां सभी लगा रहे हैं, खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। जनाब ही डाटो भलो प्रोडक्ट था, बस मतलब जेका चंदा है ना इलाइन गालन जी नंढड़ी गाल सफा भलो प्रोडक्ट है, सब लगायो सही इजिली कहें भी दुकानदार वहीं वी सो था चो बाबा वाइट एज की लवली क्रीम जो असा के वाइट एज की लवली क्रीम वो या वरी तां यो भी चेजो हो लवली क्रीम जो जेंजे अंदर सनस्क्रीन शामिल आए सही आ तो दुकान वारो समझी वेंदो त केडी शी वठण आया आयो। कुछ असांजा लिसनर थोड़ा मासूम हुंदा आइन, सो जेके मासूम लिसनर उनन जे लाए यो या तो तमाम वाइट एसी लवली क्रीम वठो आइ सो उहा क्रीम जो असा के लवली क्रीम जेंजे अंदर सनस्क्रीन शामिल आए सही आ तां के आराम सा मिली वे। अगर नथी मिली तो उनन जे लाए तमाके नंबर बुधायो आ जेते तमा राबतो कंदो पए कंदा वन्यो पया सही आ।

अच्छा हिदायतुल्लाह, ऐसी बात नहीं है, मैं भी लगाती हूँ वाइट एज की लवली क्रीम, अल्लाह सच्ची बुझाया। अमानुल्लाह टगड़ हमारे साथ मौजूद है। हेलो, गुलाम अकबर खास के लिए।

हाँ जी, ये भी बात है. अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल जयपाल भाई, आप जाइए, अच्छे से ट्रेवल कीजिए, एंजॉय कीजिएगा, और वाइट हेज के प्रोडक्ट भी जरूर परचेज करके जाइएगा. सभी की विराई दियो बाबा, तोहफा दियो, तोहफे देने से मोहब्बत वधंदी अथव. सो गिफ्ट कयो पंहिंजे प्यारनि खे, सोननि खे, जीअं अञा वधीक तव्हां सोणो थींदे ॾिसो. सही आहे न? मां कोशिशि कंदी आहियां प्रोग्राम में इलाही सिंधी ॻाल्हायां.

जुलरी खां खालिक लाशारी हदी प्रोग्राम बुधा पयो चाय भी पियां पयो वाह वाह वाह वाह एंजॉय कयो एंजॉय कयो चाचा ये तां बिल्कुल सही गाल कई अल्लाह।

शाहनवाज अली खास के लिए भी हमारा शो सुन रहे हैं. वेलकम जी, वेलकम. आए हाय, अमानुल्लाह टगर भाई आपको गाना पसंद आया, बहुत शुक्रिया. अब आप व्हाइट एज के प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करके देखिएगा और डी स्किन के प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करके देखिएगा. पांजे प्यारन के मशहूर जो तहू हाणे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर जेके मार्केट में अवेलेबल आहे आई जेके तमाजे खूबसूरती के वधायन भी पया. ठीक है, इमरान अली उजन भास से अगर मौजूद आए. हेलो, अच्छा मु समझो सब गाना भला भला हलाया था, लास्ट में एकड़ो तमाखे सैड गानो भी बुधराईंदा सी. सो ही सॉन्ग डाडो भलो आए. ये गानो उन्हनि खे डेडिकेट जेके ॾुख वारा गाना ॿुधण पसंदि कंदा आहिनि. ठीकु आहे,

जयपाल भा तव्हांजो मोहबतूं अलाए टोक था कयो अलाए तारीफ़ था कयो कॾहिं कॾहिं ॻाल्हि थोरी सम्झ में न ईंदी न न अॼु चाचे फरमाइश कोन कई हुई मां पाण ई सोचां पई अॼु चाचे फरमाइश हू नाहे कई पर असांजी परंपरा आहे न प्रोग्राम जी लास्ट में हिकिड़ो सैड गानो हलाईंदा आहियूं सो बिल्कुलु उहे प्रोग्राम तव्हां ॿुधो वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो जेको डेली तव्हां ॿुधंदा आहियो 1 बजे खां 3 बजे ताईं तव्हांजो असांजो साथ हूंदो आहे प्रोग्राम में ऐं रोज़ाना तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में ताकी तव्हांखे इहा ख़बर पवे त बाबा मार्केट में हाणे हीउ प्रोडक्ट बि अची विया आहिनि तव्हांखे हाणे कहिड़ा प्रोडक्ट इस्तेमालु करणा आहिनि

त सॼे प्रोग्राम में खिलायो आहे, सो दिलि चयो लास्ट में तव्हांखे रोआ ॾींदी वञा। सही आहे, सो वरी इनशाला तव्हां सां मुलाक़ात मुंहिंजी सेटरडे ते थींदी। सो पंहिंजो लाइ सॼो ख़्यालु रखंदा, ऐं किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां पई। सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सां सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिनके जे केस में नवन इंकशाफन ऐं गिरफ़्तारियुनि जो सिलसिलो जारी। पिनके जो माहवार 2 करोड़नि खां वधीक जी मंशियात कराचीअ में विकिरो करण जो एतराफ़। ऑफिसर्स खे किरोड़ रुपियनि जी रिश्वत ॾियण जो बि इंकशाफ़। कराची पुलिस पिनके जा अकाउंट संभालींदड़ जवाबदार ज़ीशान खे गुलिस्तान ऐं जौहर मां गिरफ़्तार करे वरितो। पिनकी जांच दौरान मंशियात बाबति समूरी ॾेती लिथी ऑनलाइन करण जो बि एतराफ़ कयो। पुलिस पिनकीअ जे बैंक अकाउंट ऐं ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन्स जा तफ़सील बि हासिल करे वरिता। अनमोल उर्फ पिनकी पुलिस खे जांच दौरान ॿुधायो आहे त सदन गैंग कराची में माहवार 2 करोड़नि खां वधीक जी मंशियात विकिरो कंदी हुई। लाहौर खां मंशियात जी सप्लाई जे लाइ इंटरसिटी बसुनि जो इस्तेमालु कयो वेंदो हो। ऑफिसर्स खे बि किरोड़ रुपया रिश्वत ॾिनी वेंदी हुई।

कराची में मंशियात विकिरो कंदड़ औरत जी गिरफ़्तारी थे इदारनि जी साराह थियणु घुर्जे कोताहिनि जी भली निशानदेही कयो पर सुठे कम जी तारीफ़ बि थियणु घुर्जे सिंध जे सीनियर वज़ीर शहज़ीर इनाम मेमण चयो आहे त मंशियात विकिरो कंदड़ औरत खे बिना हथखड़ी अदालत में पेश कंदड़ अहलकारनि खे मुअतल कयो वियो आहे सिंध में अमन अमान जी सूरतहाल बि बहितर आहे समूरा हाईवेज़ महफ़ूज़ आहिनि सूबे में सनत लॻाइण जे लाइ हुकूमत ज़मीन बि मुफ़्त में ॾेई रही आहे चारा भुटो बि हलंदड़ महीने खोली वेंदी कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी खिलाफ़ पंजाब पुलिस बि जांच शुरू करे छॾी सीसीडी अनमोल उर्फ पिंकीअ जे मुड़ुस रिटायर्ड इंस्पेक्टर खे जांच लाइ तलब करे वरितो पंजाब पुलिस जे ज़रिए मूजिबि पिंकी वारे मामले जी जांच सीसीडी करे रही आहे पिंकीअ खे कराची खां लाहौर बि आणे सघिजे थो एटमी असासा अगराई जे लाइ न पर मुल्क जे दिफ़ा जे लाइ आहिनि हक़ वारी जंग में दुश्मन पाक फ़ौज जो सेखारियल सबक समूरी जमार यादि रखंदो काबीना इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुतो एटमी प्रोग्राम शुरू कयो ऐं नवाज़ शरीफ़ मुकमल कयो दुनिया पाकिस्तान खे ज़िमेवार एटमी ताक़त तौरु सुञाणे थी हुकूमत अवाम खे रिलीफ़ फ़राहम करण जे लाइ समूरा वसीला क़तब आणे रही आहे हक़ वारी जंग में कामयाबीअ जो ॾिहाड़ो भरपूर जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो सहकार में फ़ाइदो ऐं छिकतार सां नुक़सान थींदो आहे चीनी सदर शी जिनपिंग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे मुख़ालिफ़ बदिरां भाईवार थियण जो मशवरो ॾेई छॾियो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी चीनी सदर शी जिनपिंग सां मुलाक़ात शी जिनपिंग सदर ट्रंप खे ताइवान बाबति ख़बरदार कंदे चयो त मामले खे दुरुस्त नमूने न संभालियो वियो त लाॻापा तकरार तरफ़ वधी सघनि था आलमी बहराननि जो हल रुगो सिफारतकारी ऐं ॻाल्हियूं आहिनि सदर ट्रंप चीनी सदर सां मुलाक़ात खे कामयाब करार ॾींदे चयो आहे त बीजिंग ऐं वॉशिंगटन जा लाॻापा तारीख़ी बुलंदियुनि तरफ़ वञण वारा आहिनि चीनी अमेरिकी सदरनि में मुलाक़ात तक़रीबन 2 कलाक जारी रही इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान सां जंग दौरान गॾियल अरब इमारतुनि जो ॻुझो दौरो कयो हो पर ॾेही ख़बर इदारे जी दावा इसराइली वज़ीर आज़म जो ऑफिस नेतन्याहू जे यूएई जे ॻुझे दौरे जी तस्दीक कंदे चयो आहे त नेतन्याहू ईरान ख़िलाफ़ जंग दौरान गॾियल अरब इमारतुनि वियो हो ऐं हुन यूएई जे सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान सां बि मुलाक़ात कई हुई यूएई इसराइली वज़ीर आज़म जी गॾियल अरब इमारतुनि जे ॻुझे दौरे जी तस्दीक करे छॾी परॾेही वज़ारत मूजिबि इसराइल सां लाॻापा इब्राहिमी मुआहिदे तहत शफ़ाफ़ ऐं ऐलानिया आहिनि जिन में का बि ॻुझी मुलाक़ात ऐं राब्ता शामिल न आहिनि ईरान जंग दौरान इसराइली वज़ीर आज़म गॾियल अरब इमारतुनि जो दौरो नाहे कयो

ईरान खे केर बि शिकस्त नथो ॾेई सघे। तेहरान आज़ादी जे दिफ़ा जे लाइ मुकमल ताक़त सां विढ़ण जे लाइ तयारु आहे। नई दिल्लीअ में ब्रिक्स परॾेही वज़ीरनि जे इजलास खे ख़िताब कंदे ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त ॿिनि सालनि दौरान ईरान खे अमेरिका ऐं इसराइल जे ॿिनि वहशियाननि हमलनि खे मुंहुं ॾियणो पियो आहे। ईरानी अवाम शदीद बमबारी बावजूद साबित क़दम रहियो। ईरान क़ौम खे धमकी या दबाव वारो नथो कंदी, मोहबत जो जवाब ई मोहबत सां ॾींदी। अमेरिकी सेनेट मां सदर ट्रंप जा ईरान जंग बाबति इख़्तियार महदूद करण वारो ठहराउ हिकु वोट तां रद्द। सदर ट्रंप जा इख़्तियार महदूद करण वारे ठहराउ जी हिमायत में 49 ऐं मुखालिफ़त में 50 वोट्स पिया। सेनेटर जेफ बर्कले जे ठहराउ जी टिन रिपब्लिकन सेनेटर्स पारां बि हिमायत कई वई।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
4: हाँ, हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पांजो मुकम्मल चेकअप करायो होम्योपैथिक इलाज सा कुदरती शिफा हासिल करियो। सेहत तंदुरुस्ती जी नई राह ते गामजन थियो तो देर छो? अवाजे पांजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो जिगर गुर्दे पिते की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ है अध मथे जो सूर अखिन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे तई बरोज जुमू मोकल है। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवा।

0: राबते जे लाए 0327 9984763 मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी मेहरबानी करे एहतियाती उपाय वठो बारन बुजुर्गन ऐं बीमार मानुन जो खास ख्याल रखो दीह जो तमाम गरम वक्त सुबह 11 खां शाम 4 वगे ताई उस खां पासो करियो गर्मी खां बचाओ तवां जे एहतियात में आहे पांजे ऐं पांजे प्यारन जी हिफाजत करियो ऐं बेन खे भी जान दियो ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तावुन सां आवाम जे आगाही जे लाए पेश कयो वियो
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: It's 3:15 PM.
3: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हाँ, हैरत अंगेज ए जदीद मशीन जरिए पांजो मुकम्मल चेकअप करायो ए होम्योपैथिक इलाज से कुदरती शिफा हासिल करो। सेहत ए तंदुरुस्ती जी नई राह ते गामजन थियो, तपोए देर छो? अवां जे पांजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज, मादो ए जिगर, गुर्दे पित्ते की पथरी ए सोज, पुरानी खंग, जुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखिन जी खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोजानो सुबह 9 वगे खां शाम 5 वगे ताई, बरोज जुमू मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधिक मशोरे ए राबते जे लाए 0327-99-84-763।
5: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
6: GAFM 88
5: नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसानों

0: It's 4 PM. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़. आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर.
3: गेम कम कंदी हुई

गडियल फ़ाइदे ऐं गडियल कामयाबी ते आहे। ॿिन्ही धुरियुनि खे हाकारी अगभराई खे बरक़रार रखण लाइ गॾिजी कमु करणु घुरिजे। चीनी सरकारी मीडिया मूजिबि सदर शी जिनपिंग चयो आहे त ताइवान मामिलो चीन ऐं अमरीका जे लाॻापन जो सभ खां अहम मामिलो आहे। जेकॾहिं मसइले खे दुरुस्त तरीक़े सां संभालियो वियो त ॿिए तरफ़ा लाॻापा मज़बूत थी सघनि था। जेकॾहिं मुनासिब अंदाज़ में न संभालियो वियो त ॿई मुल्क तकरार तरफ़ वधी सघनि। ट्रंप चयो आहे त शी जिनपिंग सां मुलाक़ात करणु हुन एज़ाज़ दौरे ते दुनिया जा बहितरीन कारोबारी अॻवान वठी आयो आहियां। सदर शी जिनपिंग सां लाॻापा हमेशह इंतिहाई शानदार रहिया आहिनि। तारीख़ी मुलाक़ात जो सभ खां बुनियादी फोकस गॾियल वापारु आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में ईंदड़ केतिरनि ई ॾहाकनि ताईं बहितरीन ऐं मज़बूत लाॻापा क़ाइमु रहंदा। असांजा लाॻापा हमेशह सुठा रहिया आहिनि। जॾहिं बि मुश्किलातूं आयूं आहिनि गॾिजी हल कयूं। मां हर हिकु खे चवंदो आहियां त चीनी सदर अज़ीम अॻवान आहे।

ईरान के परदेही वजीर अब्बास इराकची वाहिद इसराइल से मिली भगत करण वारन का हिसाब वरतो वो ईरान के अजीम अवाम से दुश्मन एक अहम कहानी जुआ है इसराइल से मिली भगत के माफी न दियण जोगी है।

0: ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में तेज़ हवा सां बरसाति जो इम्कान। मौसमियात खाते चवण आहे त सिंध जे अक्सर इलाइक़नि में मौसम शदीद गरम ऐं ख़ुश्क रहण जो इम्कान आहे। शदीद गर्मी ऐं हवा में नमी जी जेकमाबाद कश्मोर ऐं घोटकी ज़िले में तेज़ हवा ऐं गजगोड़ सां हल्की बरसाति जो इम्कान आहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ में भलीकार आऊं आहियां शुएब लाशारी। हेडलाइंस मां ॾिठियूं तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: रिश्ता हाणी हैरत अंगेज ऐं जदीदीए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे

0: सकरण में मशहूर व मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो जिगर गुर्दे पिते की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर से हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज किया वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे खां शाम 5 वगे ताई बरोज जुमू मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण वधिक मशोरे ऐं राबते जे लाइ 0327-9984-7063। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाय वठो। बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो। बाहर निकरण वक्त कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठायो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का ढिलो ऐं हल्के रंगन वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां आवाम जे आगाही लाइ पेश कयो वियो।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by
1: Dutch Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, diamond skin जैसी है में diamond glow bleach.
2: खूबसूरती है जो सिर्फ है ना में vitamin E जदीद micro beads formula. अमाजी skin के बनाए निखरी ऐ चमकदार सिर्फ मिंडी हन में dark spots के करे खत्म ऐ दिए कुदरती असली glow. D skin beauty cream असली glow हर नहीं है जो शो. A product by Biocon Internet. नेशनल पाकिस्तान.
3: क्या देख रहे हो?
4: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो.
3: बाहर से भेजे

0: कम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे, पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस: सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763।
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ढाडो सुठो
3: जीए FM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

देखिए नया ड्रामा सीरियल दिल ढूंढता है फिर वही, पहली अक्टूबर से बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।

सां महफ़िल मार्शल जी अमन वारनि कोशिशनि जी कामयाबी लाइ दुआ घुरायूं। आईनी तरमीम बाबति अञा ताईं कुझु बि साम्हूं न आयो, तबसरो नथो करे सघां। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी चयो आहे त हुकूमत खे नए माली साल जी बजट में अवाम खे रिलीफ ॾियण जी कोशिश थियण घुर्जे। बजट ते हुकूमत सां मुशावरत लाइ चार रुकनी कमेटी जोड़ी आहे। राजा परवेज़ अशरफ, सलीम मांडवीवाला, शेरी रहमान ऐं नवीद कमर कमेटी में शामिल आहिनि।

ऐं छिकताण सां नुक़सान थींदो आहे. चीनी सदर शी जिनपिंग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे मुख़ालिफ़ वतां भाईवार थियण जो मशवरो ॾेई छॾियो. सदर ट्रंप खे डिनर आचरण खे ख़िताब कंदे चीनी सदर चयो त अमरीका ऐं चीन जो तालुक दुनिया में सभिनी खां अहम आहे. ॿई मुल्क गॾिजी तरक़ी करे सघनि था. अमरीका खे ॿीहर असीम बणाइण चीन जी तरक़ी सां भेट रखे थो. अमरीकी सदर ट्रंप चयो त

सां जंग दौरान गडियल अरब अमारतनि जो गुझो दौरो कयो हो। परडेही ख़बरू इदारे जी दावा इसराइली वज़ीर आज़म जी आफिस नेतन्याहू जी यूएई जे गुझे दौरे जी तस्दीक कंदे चयो आहे त नेतन्याहू ईरान ख़िलाफ़ जंग दौरान गडियल अरब अमारतनि वियो हो ऐं हुन यूएई जे सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान सां बि मुलाक़ात कई हुई। यूएई इसराइली वज़ीर आज़म जी गडियल अरब अमारतनि जे गुझे दौरे जी तरतीब करे छॾी। परडेही वज़ारत मूजिब इसराइल सां लॻापा इब्राहिमी معاہدے تحت شفاف اعلانیاں ہیں جن میں کابی گجی ملاقات رابطہ شامل نہ ہیں۔ ایران جنگ دوران اسرائیلی وزیر اعظم گڈیل عرب امارتن جو دورو نہ ہی کیو۔ शिकस्त नथो ॾेई सघे। तेहरान आज़ादी जे दिफ़ा लाइ मुकमल ताक़त सां विढ़ण लाइ तयारु आहे। नई दिल्ली में बुरकस परडेही वज़ीरनि जे इजलास खे ख़िताब कंदे ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त ॿिनि सालनि दौरान ईरान खे अमरीका ऐं इसराइल जे ॿिनि पेशियाणनि हमलनि खे मुंहुं ॾियणो पियो आहे। यूएई बि ईरान ते हमलनि में सिधी रीत मुलविस हुयो। ईरानी क़ौम कंहिं धमकी या दबाउ वाडो न चुकंदी, मोहबत जो जवाब बि मोहबत सां ॾींदी।

0: सदर ट्रंप जा ईरान जंग बाबत इख्तियार महदूद करण वारो ठहराव एक वोट तारद सदर ट्रंप जा इख्तियार महदूद करण वाले ठहराव की हिमायत ने 49 मुखालफत ने 50 वोट पिया सेनेटर जेफ बर्कली के ठहराव के टिन रिपब्लिकन सेनेटर्स पारा भी हिमायत कई वही।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जैक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम
2: किसानों के

0: इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो डी अवहां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: क्या देख रहे हो
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
3: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
4: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देरि छो अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल की तकलीफ है अध मथे जो सूर अखिन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उनन सबनी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे खां शाम 5 वगे ताई बरोज जुमू मोकल आहे एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण वधिक मशोरे ऐं राबते जे लाइ 0327-99-84-763
5: अजरक के रंगों से रंगी
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
5: सिंध के दिल से निकली आवाज
6: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: छा अवां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीए हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
1: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसानों को

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: इजाज़त वोट करण ते पार्लियामेंटेंसी रुकनियत बि ख़तम थी सघे थी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त कंहिं बि आइनी तरमीम ते हुकूमत मशावरत नाहे कई। तबसरो कीअं कयां, दुनिया जे अमन लाइ वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल घणी महिनत करे रहिया आहिनि। जंग ख़तम थियण सां बि आवाम खे रिलीफ़ मिलंदो, मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत ते तनक़ीद करणु मुनासिब नाहे। बजट ते हुकूमत सां मुशावरत लाइ राजा परवेज अशरफ, सलीम मांडेवाला, शीर रहमान ऐं नवीद कमर ते ॿधल कमेटी जोड़ी आहे।

सहकार में फ़ाइदो ऐं छिकताण सां नुक़सान थींदो आहे. चीनी सदर शी जिनपिंग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे मुख़ालिफ़ बदिरां भाईवार थियण जो मशवरो ॾेई छॾियो. सदर ट्रंप खे ॾिनल आजियाणे खे ख़िताब कंदे चीनी सदर चयो त अमरीका ऐं चीन जो तालुक़ दुनिया में सभिनी खां अहम आहे. ॿई मुल्क गॾिजी तरक़ी करे सघनि था. अमरीका खे ॿीहर असीम बणाइण चीन जी तरक़ीअ सां भेट रखे थो. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त चीन में शानदार आदर भाव कयो वियो. ट्रंप चीनी सदर ऐं संदसि वनीअ खे अमरीकी दौरे जी बि दावत ॾेई छॾी.

0: क्वीन अनमोल उर्फ पिनकीअ जे केस में नवनि इंकशाफ़नि ऐं गिरफ़्तारियुनि जो सिलसिलो जारी। पिनकीअ जो माहवार ॿिनि किरोड़नि खां वधीक जी मंशियात कराचीअ में विकिरो करण जो एतिराफ़। आफ़ीसरनि खे किरोड़े रुपियनि जी रिश्वत ॾियण जो इंकशाफ़। कराची पुलिस पिनकीअ जा अकाउंट संभालींदड़ जवाबदार ज़ीशान खे गुलिस्तान जौहर मां गिरफ़्तार करे वरितो। पिनकी जांच दौरान मंशियात बाबति समूरी डेती लेती ऑनलाइन करण जो बि एतिराफ़ कयो। पुलिस पिनकीअ जी बैंक अकाउंट्स ऐं ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन्स जा तफ़सील बि हासिल करे वरिता। अनमोल उर्फ़ पिनकी पुलिस खे जांच दौरान ॿुधायो आहे त संदसि गैंग कराचीअ में माहवार ॿिनि किरोड़नि खां वधीक जी मंशियात विकिरो कंदी हुई। लाहौर खां मंशियात जी सप्लाई लाइ इंटरसिटी बसनि जो इस्तेमालु कयो वेंदो हो। ऑफिसरनि खे बि किरोड़े रुपया रिश्वत ॾिनी वेंदी हुई। कराचीअ में मंशियात विकिरो कंदड़ औरत जी गिरफ़्तारी ते इदारनि जी साराह थियणु घुर्जे। कोताहियुनि जी भली निशानदेही कयो पर सुठे कम जी तारीफ़ बि थियणु घुर्जे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शजील मेमन चयो आहे त मंशियात विकिरो कंदड़ औरत खे बिना हथकड़ी अदालत में पेश कंदड़ अहलकारनि खे मुअतल कयो वियो। सिंध में अमन अमान जी सूरत हाल बि बहितर आहे। समूरा हाईवेज महफ़ूज़ आहिनि। सूबे में सनत लॻाइण लाइ हुकूमत ज़मीन बि मुफ़्त में ॾेई रही आहे। शाहराह भुट्टो बि हलंदड़ महीने खोलियो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: कहिड़ो शौक़ हो न तोखे मुंहिंजो रओ पाए तयार थियण जो।
1: तू आज भी हसी।
0: थोरो पाए त ॾेखार।
2: न मां थकी पई आहियां।
0: न पुट, ही थक न आहे, रत जी कमी आहे। ॾिस त केॾो न फिको थी वियो आहे तुंहिंजो चहिरो।
2: छा कयां मां?
0: 6 महीना थी विया आहिनि पुट, तू उमीद सां आई ऐं हाणे वञी तो शुरू कई आहे फौलाद जी गोरी। कचू भाॼियूं खाईंदी कर पुट, तोखे ख़बर आहे असां त मेवनि जूं खलूं बि खाई वेंदा हुआसीं। उन्हनि सां ई त खून ठहंदो आहे, इन सां न तोखे कुझु थींदो ऐं न ई ॿार खे। पुट, हाणे तूं माउ थियण वारी आहीं, पंहिंजो ख़्यालु रखण ॿियनि खां बि वधीक ज़रूरी आहे।
1: मेरी बात तेरे ज़िम्मे, अब ये तुझको
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्तु आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़नि सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़, नरम ऐं रोशन चेहरो। पहिरें ई इस्तेमाल में फ़र्क़ु महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज़।
5: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे, पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब ते जे लाइ 0327-99-84-763। मुल्क में गर्मी जी शदीद लहर जारी आहे, जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सघे थी। महिरबानी करे एहतियाती उपाउ वठो। बिना ज़रूरत जे घर खां ॿाहिरि न निकिरो। ॿाहिरि निकिरण वक़्तु कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो। ORS या निमकोल इस्तेमालु करियो। हल्का, ढिलो ऐं हल्के रंगनि वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाही लाइ पेश कयो वियो।
6: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हेलो वर्णा, खबर ना है, मैं हर वक्त तेरी थकेला थकेला छोड़ दिया आया।
1: तू खाइंदी इच्छा है स्कूल में, बाकी बार अंजी मंझंजी मानी डिठिया है।
2: सो

0: चैन है। तता उन के रोज अंडा खाराए जो मंझन जी मानी में सूफ दी जो
1: बारन में कमजोरी अक्सर जरूरी गिजाई जुजन जी घटताई हुंदी आहे जेका उन्हनि जे सिखण जी सलाहियत में रंडक बणिजे थी। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ॾाढो सुठो
2: GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: सजो डी दिसा थी तो के परेशान घुमंदी रही आ पहरो भेरो मा थी रही आ ही ना मुझो भी इयो ही हाल हो
2: खबर ना है तो आही सब कुछ किया क्यों नानी मा ता एतरो थकी थी पवा छा कयो हो तवा

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763।
3: आप सुन रहे हैं
4: GAFM

0: छा अमा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीए हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
1: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसानों

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

0: सिंध हाई कोर्ट SPSC 2024 जी गडल चटा भेटी इम्तिहान जा नतीजा मुअत्तल करे छलिया साल 2024 जो समूरो रिकॉर्ड सील करे रिपोर्ट पेश करण जो भी हुकुम सेक्रेटरी SPSC ए कंट्रोलर के 21 मई ते जाती हैसियत में पेश थियण जी हिदायत इम्तिहानी जवाबन वारियूं कापियूं बे तहवील में वठण जो हुकुम जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर ऐं जस्टिस निसार अहमद बंबरो ते ॿधल आईनी बेंच मुख़्तलिफ़ उमेदवारनि जी दरख़्वास्तनि ते ॿुधणी कई अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खे साल 2024 जे इम्तिहाननि जो समूरो रिकॉर्ड सील करे रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत केस जी वधीक ॿुधणी 21 मई ताईं मुल्तवी करे छॾी
1: पार्लियामानी पार्टी जो अहम इजलास पीपल्स पार्टी जे चूंडियल नुमाइंदनि वफ़ाकी हुकूमत ख़िलाफ़ शिकायतनि जा ढेर लॻाए छॾिया पीपल्स पार्टी जा गम न थियण ऐं नुमाइंदगी न मिलण जूं शिकायतूं वफ़ाकी हुकूमत सां जारी सहकार ते नज़रसानी करण जी तजवीज़ टफ टाइम ॾियण जो मुतालबो बिलावल भुट्टो ज़रदारी चूंडियल नुमाइंदनि जी शिकायतनि ते वफ़ाकी हुकूमत सां ॻाल्हियुनि लाइ 4 रुकनी कमेटी जोड़े छॾी खेत्रनि खां वफ़ाकी हुकूमत खे आगाह करण जी हिदायत
0: दबजी विया 4 पोरित फौत 5 सख़्मी कोयले जी खाण में कम कंदड़ 9 पोरित भेक किरण सबब दबजी विया 4 पोरितनि जा लाश कढिया विया फौतनि में सवात वासी ज़ियाउल्ला नूर मोहम्मद इरफान उल्ला ऐं सांगड़ वासी साईंदाद भट्टी शामिल
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: मोरू नौशहरों मीरपुर खास लाड़काना सक्खर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज GAFM 88 नेटवर्क हाण नरम चमक ऐं साफ़ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिंमें शामिल आहे SPF 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचाव लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हांजे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमालु करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
4: अब चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ़ुज़ दे कोजिक एसिड जो जिल

महसूस करो हमें डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पांचो चेहरो जीए होजे हीरो हमें डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जीएसखर एफएम 88 लाइव स्टूडियोज का प्रोग्राम रौनक महफिल सांड करे आवा है आवाजो पैंजो मेजबान बाबर शेख। इन्हीं उम्मीदन साथ अमा बिल्कुल ठीक ठाक हूं। अल्लाह पाक सभी ते पैंजी रहमतन जा साया बरकरार रखे। हाँ, जिते हुजो खुश हुजो आबाद हुजो। दोस्तों, बिल्कुल रौनक महफिल प्रोग्राम है, जीए एफएम नेटवर्क है। 8 वगे ताई अवां जो असां जो साथ अॼु बि इंशाल्लाह जारी रहणो आहे। तारीख़ जी अॼु ॻाल्हि कयां त 14 मई 2026।

आज खां बाद में कुछ दिन खां बाद में वरी एकड़े नए प्रोग्राम में अवां सां मुलाकात कंदो यानी आज प्रोग्राम आहे असां जो आखरी इन आखरी प्रोग्राम में पाण कंदासी तमाम घणी कचहरी आज प्रोग्राम में अवां लाइव कॉल्स मैसेज आई व्हाट्सएप ते वॉइस नोट्स जरिए धड़ा धड़ शामिल थी जो आई प्रोग्राम में बाकायदा तौर ते पाण कचहरी कंदासी असां जी जेके खूबसूरत यादू रहियूं इन सतन महीनन में असां जे हिन प्रोग्राम में जेका अवां खे खूबसूरती जा राज़ ॿुधाया विया जिन अवां जे कॉन्फिडेंस में इज़ाफ़ो कयो उन ते पाण गुफ़्तगू कंदासीं ऐं गॾो गॾु अवां खे जेका न अच्छा गिव अवे थींदो गिव अवे इहो थींदो त अॼु सेल्फी विनर ऑफ द वीक बल्कि सेल्फी जेको आहे न विनर अॼु अनाउंस कंदुसि मां हिकिड़ो जंहिंखे इनाम मिलंदो 500 रुपियनि जो कैश इनाम ऐं अवां खां फीडबैक बि वठंदुसि त जेको नओं प्रोग्राम आहे जेको अवां लाइ खणी ईंदुसि कुझु टाइम खां बाद में अवां उहो कहिड़े टाइप जो प्रोग्राम ॿुधणु चाहियो पिया या हिन प्रोग्राम जे हवाले सां जेको बि तव्हांजो फीडबैक हुजे मुंहिंजी अखियुनि ते अॼु तव्हां खुली करे शामिल थी करे पंहिंजो फीडबैक बि ॾेई सघंदव ऐं जेको आहे त प्रोग्राम में अवां ॻाल्हाए बि सघंदव ऐं हिन सतनि महीननि में पाण हिन प्रोग्राम में छा सिखियोसीं असांजी कहिड़ी ग्रूमिंग थी आहे असां हिन ते बि ॻाल्हाईंदासीं ठीकु आहे तव्हां जा वधि खां वधि वॉइस नोट्स अचनि मैसेजेस अचनि लाइव कॉल्स अचनि त प्रोग्राम में बाक़ाइदा तौर ते अॼु आख़िरी प्रोग्राम पाण यादगार बणाए वञे तो असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000113488 ऐं मैसेज जे ज़रिए बि तव्हां जॉइन करे सघो था मैसेज जे लाइ SKR लिखो स्पेस ॾियो पंहिंजो मैसेज 888 ते यानी 8881 ते सेंड कयो ऐं फेसबुक ते अवां असांजी पेज FM88GS अखर ते ॿुधी सघो था ऐं तव्हां व्हाट्सएप ते बि साॻी नंबर ते मूंखे जॉइन करे सघो था हिन खां अलावा हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारनि जे तव्हां सां ई प्रोग्राम अवां ताईं पहुचायो वञे पियो हाणे 7 महीना हिननि स्पॉन्सरशिप कई जसो जे हिननि खे बि 7 महीना वॾो टाइम आहे 7 महीना पंहिंजा ईअं गुज़री विया आहिनि जेको आहे त हेमे ब्यूटी शो में का ख़बर ई कोन पई ऐं रौनक महफ़िल में मां हमेशह इहा ॻाल्हि कंदो आहियां त यार रौनक तॾहिं ई मूंखे महसूसु थींदी आहे जॾहिं अवां जो साथ हूंदो आहे अवां जो फीडबैक हूंदो आहे अवां जूं मोहबतूं हूंदियूं आहिनि न त इहा रौनक बाक़ाइदा तौर ते हिन रौनक में चार चंड लॻी वेंदी त दोस्तो बिल्कुलु अॼु बि इहा रौनक जेका इंशाल्लाह ताला बहाल रहंदी ऐं अॼु जी रौनक अञा वधीक ॿी रौनक खां डिफरेंट ठीकु आहे दोस्तों हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारनि खे तव्हां फीडबैक बि ॾेई सघो था हिन जो हेल्पलाइन नंबर आहे 03671354 07 नंबर वन सेकंड मां रिपीट कयां पियो 03-36-71-35-407 इन नंबर ते तव्हां कॉल करे हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे बारे में हिननि खां मालूमात वठी सघो था ऐं जी पुछी सघो था त तव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते हेमे ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे हिननि खे इहो बि चई सघो था त बाबा छो भला 7 महीननि में थकिजी पियो ख़ैर त आहे तो अवां जी सेल्फीज़ जेके आहिनि उहे बि तव्हां मूंखे सेंड कजो अॼु इनशाला वेंदे वेंदे कुरानदाज़ी कयूं वेंदुसि ऐं प्रोग्राम में जेका आहे अवां जी फरमाइश बि अॼु प्रोग्राम में शामिल करण जी मां भरपूर कोशिशि कंदुसि ठीकु आहे त प्रोग्राम जी शुरूआत में तमामु प्यारो प्यारो कलाम मुंहिंजी प्लेलिस्ट में आहे जेको मां अवांजे लाइ प्ले कयां पियो अवां खे वंस अगेन ॿुधाईंदो हलां त अॼु जे प्रोग्राम में जेके ॻाल्हियूं पाण डिस्कस कंदासीं उहे आहिनि अच्छा हिकु त पाण हिन ॻाल्हि ते डिस्कस कंदासीं त जेका आहिनि ख़ूबसूरत यादियूं पंहिंजूं हिन 7 महीननि में कहिड़ियूं रहियूं हिन प्रोग्राम में गॾु गॾु जेको आहे त अवां हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में बि फीडबैक ॾींदा सेकेंडली तव्हांजी जेका नेचुरल ख़ूबसूरती जेका हिननि जो मोटो हुयो हेमे नेचुरल्स वारनि जो त तव्हांखे नेचुरल ग्लो मिले पियो कुदरती निखार मिले पियो उहो अवांजो कीअं लॻो अवांखे ऐं उन सां अवांजो कॉन्फिडेंस केतिरो बिल्डअप थियो इहो बि ॿुधाईंदो ऐं हिन प्रोग्राम ज़रिए अवां केतिरी लर्निंग कई ऐं अवांजी केतिरी ग्रूमिंग थी इन ते बि पाण गुफ़्तगू कंदासीं ऐं हिन प्रोग्राम में गिव अवे मां अवांखे कंदुसि 500 रुपियनि जो कैश इनाम प्राइज कंदुसि ऐं तव्हां जेको आहे पंहिंजो फीडबैक ॾींदो प्रोग्राम में ठीकु आहे त डन थी वियो इहो असां प्रोग्राम में अॼु करण वारा आहियूं त प्रोग्राम जी शुरूआत में तमामु प्यारो प्यारो कलाम अवां सभिनि जे लाइ प्ले करे छॾियो आहे तव्हां कलाम ॿुधो ऐं रौनक महफ़िल में 8 वॻे ताईं मूंसां गॾु रहिजो वधि खां वधि तव्हांजा प्रोग्राम में फीडबैक्स मां शामिल कंदुसि त कनेक्ट रहिजो ऐं अॼु दिलि खोले करे पंहिंजा वॉइस नोट्स ऐं लाइव कॉल बि असां करे सघो था तव्हां

0: सुठी मोटी ना जी अशरफ अली मीराली साहब भी सेल्फी मोकली जबरदस्त तरीके से साइंजन की भी मोहब्बतू आन वॉइस नोट भी मोकलो तकरीबन अढ़ाई मिनटन जो है जो अभी सभी जहाँ वॉइस नोट शामिल करना है इनजो आप लिखा पे बुध
1: असलाम वालेकुम या अली मदद बाबर बाग केड़ा लन खुश आयो मां उम्मीद के आंदा वा जते हुंदा खुश हुंदा ए सदा ही आबाद हुंदा मुस्कराइंदा रहंदा बा मिल मां विलेज वांड बशा मुजी से के असांगे डिस्ट्रिक्ट क्लार्क कने खा अशरफ अली मिराली पे गलाया बाजी ते ताई प्रोग्राम हेमे नेचुरल्स डायमंड गिलो ब्यूटी क्रीम मारन तावन सा जको हलंदो होयो ए रौनक के महफिल नालो भी ता रखे सुन जो सो अज आखरी प्रोग्राम आ दाडो दुख पयो थे तो असां अचूं पिया जेकर प्रोग्राम हली आहे ॾाढो ॿुधंदा हुआसीं सुकून मिलंदो हुयो ऐं रोज़ानो टाइम ते पाबंदी सां ॿुधंदा हुआसीं ॾाढो मज़ो ईंदो हुयो अॼु आख़िरी ॾींहुं आहे तव्हां अनाउंस कयो आहे असांखे दुख थो थिए त हाणे असां कंहिंजो प्रोग्राम ॿुधंदासीं कंहिं मां लुत्फ़ अंदोज़ थींदासीं ऐं कंहिं मां सुकून वठंदासीं त हिन में तव्हांजो आवाज़ ई अहिड़ो हुयो न कोयल जहिड़ो मिठड़ो आवाज़ हुयो ॾाढो ख़ूबसूरत पसंदीदा आवाज़ हुयो मूंखे न बल्कि काफ़ी दोस्त किथां किथां खां ॻाल्हाईंदा हुया सभु ईअं ई चवंदा हुआ त वाह बाबर वाह बाबर वाह सो हाणे अगरि ई असांजा आवाज़ हेमी नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारा ॿुधनि पिया या ॿुधनि त हुननि खे असां रिक्वेस्ट आहे भई प्रोग्राम ख़तमु न कनि ख़तमु थियण सां जेको आहे न असांखे ॾुख थो थिए ऐं हीअ जेका सत महीना गुज़री विया आहिनि गुज़िरियल सत महीना असां तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधोसीं ॾाढो मज़ो आयो ऐं हाणे जेकॾहिं तव्हां ख़तमु था कयो त मूंखे सम्झ में नथो अचे छा ॿुधंदासीं ऐं सत महीना ईअं गुज़री विया सत महीना काफ़ी अरसो हूंदो आहे हूअं त हाणे ईअं पियो लॻे ॼण हिकिड़ो कलाकु गुज़रियो सो तव्हांजो असांखे प्यार ई एतिरो मिलियो ऐं ॾाढो असां जेको आहे त तव्हांखे भाईंदा आहियूं ऐं तव्हां असांखे वध खां वधि इज़त ॾिनी ॾाढो सुकून पियो मिले असांखे ऐं आख़िरी प्रोग्राम ॾुख थो थिए सो हाणे बाबर भा तव्हां त मोकिलणी कयो पिया पर असां बि तव्हांखे चवंदा जेकर न वञूं पर मां इहो बि सम्झां थो स्पॉन्सर छो आहे छो त ईअं त मां नथो हली सघंदो हुन खां सवाइ हुनजे तावन खां सवाइ न हली सघंदो तव्हांजी ॻाल्हि बि सही आहे सो असां रिक्वेस्ट कंदासीं हिन प्रोग्राम में अॼु तव्हां चयो तव्हांजी फरमाइश बि आहे ऐं असांखे अॼु शमन अली मिराली साहब जे आवाज़ में न हीउ कलाम ॿुधाइजो हीअ असीं ज़िंदगी ईअं गुज़री वई त ख़बर ई न पई सो जीअं इहा सत महीना गुज़री विया ख़बर कान पई तीअं उहे बि शमन अली मिराली लफ़्ज़ सही आहिनि ॾाढो हुन बि सही ॿुधायो आहे सो अॼु महिरबानी कजो इहो ॿुधाइजो ऐं आख़िरी सेल्फी जो सेंड करे रहियो आहियां सो हाणे मुंहिंजा भाइरनि इम्तियाज़ अली बंगलाणी न उनखे बि खोड़ सारा सलाम हुजनि छो त आख़िरी प्रोग्राम आहे वरी अलाए छा थिए हिन महिल तव्हांजे प्रोग्राम ॿुधनि पिया अब्दुल जबार मिराली तनवीर मिराली साजन मिराली ऐं असां सभिनी तरफ़ां भा अलविदाई ऐं या अली मदद
0: माला अली मद साईं तव्हांजी महिरबानी मिराली साहब अवांजी मोहबतूं ऐं तव्हांजो इहो फीडबैक यार सच मुझो दिलि ते लॻो आहे ऐं दिलि न पई थिए प्रोग्राम मां वेंदे पर छा हिते यार वञिणो थो पवे वरी वेंदासीं वरी मोटी ईंदासीं इनशाला पर इहो जेको तव्हां फीडबैक ॾिनो त अलाए त छो स्पॉन्सरशिप ख़तमु इहो फीडबैक तव्हां हिननि जी हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करे हिननि खे ॾेई सघो था नंबर आहे 0336-7135-407 जी हा 0336-7135-407 ऐं यार ख़बर आहे तव्हांखे जॾहिं मां अॼु इहो थोरो प्रोग्राम जी तयारी पई कई त सोचां पियो त यार सत महीना प्रोग्राम किथे आहे ख़बर ई न पई कल्ह जी ॻाल्हि पई लॻे ॾिसो रमज़ान जे मुबारक जे महीने में पाण ई प्रोग्राम हलायोसीं उन खां पहिरियां बि महीना ई हली चुको कीअं ज़िंदगी गुज़रे पई यार कुझु ख़बर कोन पई पवे इन जे लाइ यार जेतिरो थी सघे न तव्हां जेको आहे न उहे कम कयो जेके असांजी दुनिया ऐं आख़िरत ॿिन्हिनि में कमु अचनि ज़िंदगी ईअं ई सिमिलरली गुज़री वेंदी हाणे सत महीना मतिलबु अगरि असां सत महीना चऊं न त इहे सोच में अचनि यार वॾो टाइम आहे पर ईअं पई लॻे जीअं हींअर मिराली साहब चयो यार कल्ह जी ॻाल्हि आहे कलाकु लॻो ॾियणु कलाकु गुज़री वियो थिए यार ॿेली जेका आहे न कोशिशि कयो सिधी वाट ते बि हलूं असां ऐं उहे मतिलबु कमु कयूं अला पाक जे ॿुधायल उन रस्ते ते हलूं जंहिंसां असांजो हीउ जान ऐं मथियूं जान बि ॿई असांजा अहिड़ा हुजनि जो अला साईं असांखे पंहिंजी अमान में रखे ठीकु आहे ऐं तव्हांखे दुआउनि जे लाइ बि मां ज़रूरु चवंदुसि त मुंहिंजे लाइ दुआ बि ज़रूरु कंदा कयो मां बि अव्हांजे लाइ दुआ हूंदो आहियां ऐं सेकेंडली प्रोग्राम में ॾिसो परफेक्ट जेका आहे न अव्हांखे का बि शइ जेका आहे न मां सम्झा पियो हिन दुनिया में नथी मिली सघे परफेक्ट शइ जेका आहे न अगरि असां प्रोग्राम में तव्हां परफेक्शन ॻोल्हियो त उहा ॾाढी ॾुखी हूंदी आहे हाणे काफ़ी सारा लिसनर्स अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंजी फरमाइश पूरी नथी सघंदी हुजे बुलो साहब मुंहिंजे ख़्याल में पनवाखिल खां हिकु बुला बिरादरी ईंदी आहे हमेशह मूंखे मयार ॾींदा आहिनि यार बाबर हैफ हुजे गानो न हलाई असांजो त बाबा हुननि खां बि माज़रत आहियां ऐं जंहिंजा गाना न हलाए सघियुसि जंहिंजा वॉइस नोट्स शामिलु न करे सघियुसि उन्हनि खां बि माज़रत खां आहियां त

0: वेंदे पर छाई त हाणे स्पॉन्सरशिप आहे मीराली साहब वधीक हिन ॻाल्हि खे सम्झी वियो। चलो हिकिड़ो ही वॉइस नोट आहे, अॼु त माशाल्लाह यार जेके सेल्फियूं अचनि पियूं, गुल गुलाबी शाह साहब माशाल्लाह साईं चहिरो ॾेखारियो अथई मूंखे, ॾाढी ख़ुशी थिए पई। पर हैमी ब्यूटी क्रीम जी कमी आहे, बहरहाल इट्स ओके। गुल गुलाबी शाह साहब छा पिया चवनि, अचो त ॿुधूं पिया।
1: अस्सलाम अलैकुम या अली मदद, हक़ मौजूद बाबर जानी, तमामु ॾुख यार, वासता तोखे रब जावेदा, हेमे डायमंड गिलो शो छॾे न वञ, छॾे वेंदे त रोईंदासीं पिया बाबा, सो ईअं न कर, असांखे ॾुख आहे न, छो न छॾे वञ बाबा, हर हाल में तोसां हाज़ुर थींदासीं। डायमंड गिलो ब्यूटी क्रीम जूं जेका ॾह ॾह पंद्रहं ॿारहं ॿारहं दॿियूं वठंदासीं, पर छो न छॾे वञ, असांखे सफ़ा वीरान न करे वञ बाबा, अलाह पाक खे वञ बाबा, कंहिंखे कमु वञ, छो न छॾे वञ यार, तमामु ॾुखिया थींदासीं, परेशानी थींदी, मज़ो न ईंदो। ॻोठ शेरवंद माइरनि खां सैयद गुलाब अली शाह बुखारी, दवार मोहम्मद बचल शंबाणी, अली हसन बाबो, सोनड़ो भाउ सोना खान मस्तोई, नज़ीर मंगेरियो साहबु, वफ़ा वईद साहब, ऐं चतोई साहब जा ॿी का ज़ात अथसि, ऐं जेकी बि संगत ॿुधे थी, सलाम या अली मदद, अली अली शमंडड़े जो को गीतड़ो ॿुधाइजांइ, ॾुख भरियो को ॿुधाए, बसि छो जो ॾुखारायूं, तूं छो छॾे थो वञे त असां ॾुखारायूं बाबा।
0: शाह साहब तव्हांजी मोहबत चयो आहे न शाह साहब, मुंहिंजी दिलि न पई मञे, यकीन पुछो वेंदे, पर यार छा कयूं, मजबूरी आहे, छा कयूं। बाक़ी गानो अॼु ॾुखियल ॿुधूं पिया, शमन मीराली साहब जो ॿुधूं पिया, ठीकु आहे, अचो त ॿुधो। अच्छा, हैमे नेचुरल्स वारनि खे तव्हां फीडबैक बि ॾियो, अॼु आख़िरी प्रोग्राम आहे त हुननि खे ज़रूरु फीडबैक ॾियो, हुननि खे ॿुधायो त भाउ छा आहे, छा आहे, सत महीना थिया त छा थी वियो। हिन जो नंबर आहे 0336-7135-407 0336-7135-407 0336-7135-407 अचो त शमन मीराली जी आवाज़ में कलाम ॿुधूं।

0: हाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धब्बा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आरबुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: जी दोस्तों रौनक महफिल प्रोग्राम में बाबर शेख अवां सां गॾु आहे जी ए एफ एम नेटवर्क आई ऐं 8 वॻे ताईं अवां जो असांजो साथ आहे 20 मिंट बचिया आहिनि यार वरी हलिया वेंदासीं वरी मोटी ईंदासीं के न के नए प्रोग्राम में इनशा ताला तव्हां जेको आहे त तव्हां जहिड़ा प्यारा प्यारा लिसनर्स मूंसां गॾु हूंदा त इनशाला प्रोग्राम में अञा डबल ट्रिपल रौनकूं थींदियूं रहंदियूं ठीकु आहे कुझु मैसेजिस आहिनि 888 ते चनेसर सोलंगी मोहम्मद सावल सोलंगी मोहम्मद आमिर सोलंगी सैफुल्ला सोलंगी ॻोठ वासन दल लग मीरपुर ख़ासि खां अला पाक अव्हांखे ख़ुशि करे अदा तव्हांजी महिरबानी Sam to you. बलोच ग्रुप नूर नबी गबोल टंडो अला यार खांदा बाबर अवां जो शो नाइस आहे ऐं अच्छा ये अगाणे वारो मैसेज आहे इट्स ओके गुड हाजी गुलाम खास के लिए लॻे झंडू मरी खां कुर्बान ख़ासि के लिए यार कुर्बान छा हाल आहे अच्छा गुलाब लगारी गोठ बशाम खान रिंद से गाजी खान रिंद चाचा मंठा रिंद रिजवान अली रिंद फैजान अली रिंद शहजाद अली रिंद छोटी कौनैन जहरा भाई आपका शो क्यों बंद कर रहे हो छोटी कौन आहिनि अच्छा गुलाब लगारी साहब साईं स्पॉन्सर शो आहे 7 महीना थी विया आहिनि हाणे स्पॉन्सरशिप वारा थकिजी पिया आहिनि चवंदा हाणे साई पटियूं वधीक तव्हां हिनजी हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करे इन्हनि खां पुछी सघो था 03671354 07 ज्वेलरी खां ख़ालिक लाशारीअ त बाबर आख़िरी शो में फौजिया सूमरो त हलायो हाज़ुर भा अॼु कोशिशि कंदुसि अवां जूं फरमाइशूं प्रोग्राम में शामिल कयां हिकिड़ो ही वॉइस नोट आहे छो त ॿुधूं पिया
2: बाबर जानी अस्सलाम अलैकुम या अली सलामत सर कहिड़ा ख़ुशि आहियो तवी सही आहे मां ज़वार मोहम्मद बचल शंभाणी नारो आर्टिक 86 गांधर ऐं तव्हांजे हेमे ब्यूटी प्रोग्राम शो में आख़िरी सम्झे तव्हांजो वॉइस कॉल मुंहिंजो अचे पियो कुझु तव्हांखे इहो बि चऊं था वियो इनशा ताला नओं प्रोग्राम वरी तव्हां खणी ईंदो असां उमेदु इहा ई आहे असां तव्हां में सर ऐं दोस्त जे लाइ इहे तव्हां रिक्वेस्ट कनि था पिया त प्रोग्राम छॾे न वञो ऐं कुझु दोस्तनि खे यादि करणु चाहियां थो सर अली मोहम्मद बमरो इमाम ॾिनो मिर्क फ़क़ीर बमरो अली गुहर महर ऐं उन खां अलावा अलावर लाशारी साहिब तबियत सही न आहे उन लाइ दुआ कजो ऐं सैद गुलाब अली शाह सैद इमदाद अली शाह इन खां अलावा जिते जिते आवाज़ वञे थो सभिनि खे मुंहिंजी तरफ़ हथ ॿधी खोड़ सला सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद भा ज़वार तव्हांजी महिरबानी अवां जूं मोहबतूं ऐं अवां जा लख तौरु आदी ज़ेबी छा पई थिए आदी ज़ेबी छा पई थिए अचो त ॿुधूं पिया
3: सलाम अदा प्रोग्राम वीआईपी नाइस ज़बरदस्त प्रोग्राम लाजवाब अदा नाइस मां एंजॉय थी कयां
1: ओके अदी तव्हांजी महिरबानी तव्हां एंजॉय कयो हिकिड़ो ही वॉइस नोट
4: अस्सलाम वालेकुम बाबर भा छा हाल आहे ख़ुशि आहे नज़ीरनि मां रहियो ॻोठ मुरीद मां रहियो भेड़ो संग्रहान तमामु हिकु त ख़ुशी बि थी जो हेम्योपैथी क्रीम वारनि जी लाजवाब हिकिड़ी क्रीम हुई जेका असांजे चेहरे खे ख़ूबसूरत पई बणाए पर अॼु जेका तव्हां ॻाल्हि कई हिन में ॾुख बि थियो पर का ॻाल्हि कोन्हे छो जो वरी इनशाला गरियल ऐं पाण परे हिक ॿिए खां न आहियूं पर हाणे अॼु दिलि थी चवे त तव्हांजो प्रोग्राम बि आख़िरी आहे ऐं कलाम बि ॿुधरायो अनवर विस्तरी जो अथव
5: छॾे वञण जी ॻाल्हि न कर मथां तोखां अॻु मुंहिंजो साहु वञे

0: साईं अलहमदुल्ला तव्हांखे मां फीडबैक ॾींदुमि। तव्हां जेके बि महीना प्रोग्राम कयो बहितरीन अंदाज़ में कयो ऐं असां तव्हांखे कॾहिं बि विसारे नथा सघूं ऐं तव्हांखे दुआ ॾियूं था सदाई शाद हुजो आबाद हुजो ऐं अहिड़ो ई प्रोग्राम वरी नओं असां लाइ खणी ईंदा ऐं असांखे इंटरनेट ॾींदा ऐं असांजी दिलि तव्हां ख़ुशि कंदा। साईं वॾी महिरबानी, अलाह साईं तव्हांखे आबाद करे ऐं तव्हांजी पूरी टीम खे अलाह ख़ुशि करे। थैंक्यू।
1: आमीन सियाल साहब, तव्हांजी महिरबानी यार। मां थोराए थो अवां जी इन्हनि मोहबतुनि जो, अवां जा इहे थोरा मूं ते आहिनि ऐं अवां जी इहे मोहबतूं मूंखे ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि। अचो त यार हिकिड़ो गानो था ॿुधूं, तमामु प्यारो गानो आहे, शैनी लाली जी आवाज़ में तमामु प्यारा ॿोल आहिनि। अचो त ॿुधूं, इंजॉय कयूं गानो ॿुधो, जेसीं ताईं मां अवां जी सेल्फी जा नाला नोट करे वठां, ठीकु आहे?

0: जी दोस्तों, बिल्कुल प्रोग्राम रौनक महफिल में बाबर शेख हवा सा गड जीए एफएम नेटवर्क सत लगी 53 मिनट टाइम थियो आहे ऐं प्रोग्राम जी आख़िरी लिंक आहे ऐं अवां जो मां थोरायतो आहियां वंस अगेन जिन 7 महीना बाक़ायदा तौर ते प्रोग्राम में मूंसां गॾु हलिया ऐं प्रोग्राम में पंहिंजो साथ निभायो, प्रोग्राम में पंहिंजी मोहबतूं ॾिनियूं, स्पेशली जिन सेल्फीज़ मोकिलियूं यार उन्हनि जो त मां हथ ॿधी शुक्रगुज़ार बि आहियां ऐं शुक्रगुज़ारी सां गॾो गॾु हेमे नेचुरल्स वारनि खे बि थैंक यू चवणु चाहींदुसि जिन स्पॉन्सरशिप हलाई 7 महीना ऐं जीए एफएम नेटवर्क ते बि इन्हनि मौक़ो ॾिनो मूंखे 7 महीना प्रोग्राम करण जो। सो जीए एफएम नेटवर्क जो बि थोरायतो गॾो गॾु हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जिन जिन इस्तेमालु कई पंहिंजो फीडबैक ॾिनो, चाहे पॉजिटिव हुजे या नेगेटिव हुजे, उन्हनि जो बि थोरायतो, छाकाणि त उन्हनि जी फीडबैक ताईं जेको आहिनि असांजा उहे लिसनर जेके इस्तेमालु करणु चाहिनि पिया उहे उनजो फ़ाइदो वठी सघनि पिया। वंस अगेन इन्हनि जो नंबर मां इन पॉइंट ऑफ व्यू सां शेयर कयां पियो अवां जे लाइ त तव्हां वधीक का बि मालूमात तव्हांखे घुरिजे त तव्हां इन्हनि खां वठी छॾिजो। ऐं हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारनि जी प्रोडक्ट जे बारे में तव्हांजो को बि फीडबैक हुजे त तव्हां इन्हनि जे नंबर ते ॾियो। स्पॉन्सरशिप बि बंदि पिया कनि, वरी नए सिरे सां असां नए प्रोग्राम में शुरू थींदासीं, इन हवाले सां बि फीडबैक हुजे त तव्हां इन जे नंबर ते कॉल करे ॾेई सघो था। नंबर आहे 0336713547। नंबर वन सेकेंड मां रिपीट कयां पियो, 0336713547। इन नंबर ते तव्हां कॉल करे हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे बारे में इन्हनि खां मालूमात वठी सघो था ऐं पुछी सघो था त तव्हांजे शहर में किथे अवेलेबल आहे ऐं वधीक इन बारे में इन्हनि खां फीडबैक बि वठी सघो था। हिकिड़ो वॉइस नोट रहिजी वियो आहे यार, इहो वेंदे वेंदे शामिल करे पोइ उनजा नाला अनाउंस कयां पियो ऐं कुरानदाज़ी करे पोइ अव्हां खां मोकिलियां पियो। ठीकु आहे, वॉइस नोट ॿुधो।
1: अस्सलाम वालेकुम, मीरपुर खास ॻोठ वली मोहम्मद रिंद खां इम्तियाज़ अली बंगलाणी। बाबर भा, हेमे ब्यूटी क्रीम त असां लॻाईंदा हुआसीं, बहितरीन हुई चेहरे जी रौनक हुई। छा करियूं, अॼु तव्हांजो प्रोग्राम आख़िरी अलविदाई प्रोग्राम आहे। असां अफ़सोस इहो ई थिए थो, असां 7 महीना प्रोग्राम ॿुधंदा रहियासीं। 7 थींदा हुआ उन टाइम असां प्रोग्राम लाज़मी ॿुधण शुरू कंदा, 8 बजे तव्हां जो प्रोग्राम ख़तमु करे पोइ कंहिं कमकार ते केॾे माण्हू इंसानु हलियो थो वञे, को शादी बि हूंदी, असां दावत हूंदी, तव्हांजो प्रोग्राम न छॾंदासीं, पूरा टाइम ते ॿुधी पोइ वेंदासीं। अफ़सोस इहो आहे हेमे ब्यूटी क्रीम वारनि खे असांजी गुज़ारिश आहे त महिरबानी करे हीउ प्रोग्राम अॻिते घटि मां घटि वधीक हलायो वञे। हेमे ब्यूटी क्रीम वारनि खे मूं वटि हेल्प नंबर आहे, उन ते बि कॉल कंदुसि। हेमे ब्यूटी क्रीम वारनि खे ही प्रोग्राम अॻिते वधाए छॾनि। अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे, प्रोग्राम हिते ई ख़तमु कनि पिया। पवर भा, महिरबानी थिए तव्हांजो असांखे हिकिड़ो फोन नंबर ॾेई छॾिजो इन मुंहिंजे व्हाट्सअप नंबर ते। ॿियो मुंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे दोस्त काठड़ी खां ग़ुलाम रसूल मरे, उन्हनि खे मुंहिंजा सलाम हुजनि। विलेज वानव शाम यूसी विके असांखे डिस्ट्रिक्ट लाड़काणे खां असांजो क़ाबिल एतराम अशरफ अली मिराली खे खोड़ सारा मुंहिंजा सलाम हुजनि। अशरफ अली मिराली जी मूं वॉइस बि ॿुधी आहे, हू मुंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे। महिरबानी करे बाबर शेख खे पंहिंजो नंबर कनेक्ट नंबर ॾे, जेको मां करे टाइम असां राब्तो बि कंदासीं।
0: साईं, अव्हां जी मोहबत यार, तव्हां ईअं अगरि कंदव न त पोइ मुंहिंजी दिलि ई न चईंदी वेंदी यार, त हिन जे लाइ बराए महिरबानी यार दिलि न लाहियो। इनशाला नए प्रोग्राम में शुरू पाण मिलंदासीं। हा, हेल्पलाइन नंबर वारनि खे फीडबैक तव्हां ज़रूरु ॾियो, 0336713547। असांजो प्यारो लिसनर इम्तियाज़ अली बंगलाणी साहब यार 7 महीननि खां मूंसां हिन प्रोग्राम में गॾु आहे बाक़ाइदा तौर ते। यार मूंखे ॾाढी ख़ुशी आहे तव्हां जेॾा प्यारा प्यारा लिसनर्स मूंसां गॾु कनेक्ट थिया, पंहिंजी अटैचमेंट रही यार, अलहमदिल्ला, प्राउड ऑफ यू तव्हां लिसनर्स जेके आहिनि, मूंक़े फ़ख्रु आहे अव्हां ते। ठीकु आहे, सो कुरानदाज़ी करे पोइ अव्हां जे लाइ थोरी शायरी बि मूं ठाही, मूं चयार वेंदे वेंदे अव्हां सां शेयर कंदुसि, पर कुरानदाज़ी करायां पियो। हिकिड़ो कॉलर शामिल कयूं पिया, लकी कॉलर आहे यार जो, लेट्स सी केरु आहिनि। अस्सलामु अलैकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: साईं केरु था ॻाल्हायो? अच्छा भयो साहब, वक़्तु तमामु मुख़्तसिर आहे मूं वटि, मां कुरानदाज़ी करायां पियो तव्हां खां। ठीकु आहे, लाइन ते ई रहियो अचो। सो दोस्तों, सेल्फीज़ मूं वटि आहिनि 14, राणो बिरोही, अशरफ मीरा, अशरफ अली मिराली साहब, हुबदार अली शेख साहब, सजन अली मिराली साहब, तनवीर साहब, गुलाम रसूल मरी साहब, जवार मोहम्मद बचल शंबाणी साहब, सवेरा मीरानी साहब, साहिबा इम्तियाज़ अली बंगलाणी साहब, नज़ीर मंगरियो साहब, ऐं ही केरु आहे, ग़ुलाम अली मजण साहब, ऐं अदी फराह साहिबा, सजाद बलोच साहब, ऐं अदा रब नवाज़ साहब। ठीकु आहे, टोटल सेल्फीज़ आहिनि मूं वटि 14। हाणे ॿुधायो, 14 नंबरनि मां कौन नंबर ऑन करणो आहे, खोलणो आहे, कहिड़ो?
2: 5
0: जी चलो अदा पंजे नंबर ते आए सज्जाद बलोच साहब ठीक है तांजी वरी मेहरबानी भयो साहब वक्त मुख्तसर आ जानिया वादी कचेरी के माता सेल्फी विनर ऑफ द वीक है सज्जाद बलोच साहब आई जिन जिन सेल्फी मोकली आने उन्हें सभी जो मां थोराए तो यहां हाथ बदी ठीक है छाकान तो उन्हें सुठी मोटे मुखे नी आए तैयार विंदे विंदे तमाम प्यारो कलाम आए ममता जाशारी जी आवाज में अड़ी खिली मोकलायों सुबह लडे विंदास अरे ताज ले आयो शायरी ठाई थोड़ी वा चमा भी तुम्हारे साथ शेयर करया ठीक है तुम्हारे साथ रही रही मां भी शायर थी वे तजी शायरी मुठाई त रोइंदड़ के खिलाणी असल जिंदगी आहे सबनी के गड खणी हलणी असल बंदगी आहे अज एक सफर खत्म थियो त छा थियो दोस्तों वरे नए मोड़ ते मिलणी त जिंदगी आहे वाह वाह अच्छा एक बो भी शहर मुठायो खूबसूरती थे हेमे ब्यूटी क्रीम जे मुतालिक तजी खूबसूरती सिर्फ चेहरन जी नाहे दिलन जी हुंदी आहे खूबसूरती सिर्फ चेहरन जी नाहे दिलन जी हुंदी आहे हकीकी चमक त प्यार जी बोलन में हुंदी आहे सत महीना अवां जे चेहरन ते मुर्कियूं विखेरियूं सी सत महीना अवां जे चेहरन ते मुर्कियूं विखेरियूं सी इया मोहब्बत ही असल सुह असांजी जिंदगी हुंदी आहे अच्छा ही आखिरी शेर है उनका पोई मां बस अवां खां अल्लाह हाफिज़ कंदस ठीक है अवां के वंस अगेन मां माजरत खवाया का गाल अगर अवां के इन सतन महीने दी सफर में बुरी लगी होजे अवां के दुआओं दी दरख्वास्त भी कंदस इन शायरी सा गड एंड कंदस प्रोग्राम जी त सफर ते कंदे कंदे मंजिल ते पहुंची वयासी अवां जी दिलन में पेंचो घर करे वयासी अलविदा चाहूं था अज इन खूबसूरत मोड़ ते पर मोहब्बतन जो एक अणखुट दास्तान छड़े वयासी सदाई गड अल्लाह हाफिज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैर

0: FM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के साल 2024 जो समूरो रिकॉर्ड सील करे रिपोर्ट पेश कई वने केस जी वधीक ॿुधणी 21 मई ताईं मुलतवी करे छॾी।
2: छठे जे झिरक रेलवे स्टेशन वेझो कोयले जी खाण में नव पोरत दबजी विया, 4 फोत 5 जख्मी। कोयले जी खाण में कम कंदड़ 9 पोरत भिक किरण सबब दबजी विया, जंहिंमां 4 फोत थी विया, जिन जा लाश कढिया विया आहिनि। फोतनि में सवात वासी ज़ियाउल्ला, नूर मोहम्मद, इरफान उल्ला ऐं सांगड़ वासी साईंदाद भट्टी शामिल।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर।

छा अमा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीए हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज़।

हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन। वधीक मशोरे ऐं राबते जे लाइ 0327 99 84 700

0: It's 8:15 a.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक
3: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसानों को

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाँ हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पांजो मुकम्मल चेकअप करायो होम्योपैथिक इलाज सा कुदरती शिफा हासिल करियो। सेहत तंदुरुस्ती जी नई राह ते गामजन थियो तपोए देर छो अवां जे पांजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो जिगर गुर्दे पिते की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज किया वो है। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे तई बरोज जुम्मो मोकल है। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण मशोरे ते जलाए 0327-99-84-760।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किस...

0: सखर सखर और सखर की आवाज GFM 88
1: बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में दाखिला जो ऐलान साल 2026 लाए दाखिलाऊँ जारिया है मुख्तलिफ शोबन में BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी BS कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई फिजिक्स रियाजी आई शुमारियात जेड़ा अहम प्रोग्राम्स ह्यूमन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी BS केमिस्ट्री BS बायोटेक्नोलॉजी BS एनवायरमेंटल साइंस इंग्लिश इस्लामिक स्टडीज बी एड चार साला एम एस एजुकेशन बसाला मुस्तैक शागिर्दियान लाइ स्कॉलरशिप भी मौजूद एलिजिबिलिटी एंड डेडलाइन घट में घट 50% मार्कू इंटरमीडिएट लाजमी उम्र जी हद 35 साल आखिरी तारीख 20 मई 2026 है ऑनलाइन अप्लाई करे

0: छा अमा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरें ई इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देरि छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखिन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई बरोज जुमू मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण। वधिक मशोरे ऐं राबते जे लाइ 0327-99-84-763।
0: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज़।

0: मेरी जिंदगी थी वो,
1: मेरी जिंदगी है तू,
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

हो भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: मिर्जा की हीर देखिए 8 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ढाडो सुठो
1: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

आहिनि। जॾहिं त नव विरहन जो अब्दुल मालिक पिताफ़ी गणती जोगी हालत में ज़ख़्मी थी पियो। इतलाती इलाइक़े वासियुनि ऐं इमदादी टीम फौतिन ऐं ज़ख़्मी खे वाहे मां कढी इस्पताल मुंतक़िल कयो, जॾहिं त ज़ख़्मी ॿार खे वधीक इलाज लाइ रहीम यार ख़ान मुंतक़िल कयो वियो। हादिसे बाद इलाइक़े में सोग जी लहर छांइजी वई। सखर पुलिस समाजी बुराइन ऐं मंशियात फरोशन ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी रखंदे मुख़्तलिफ़ कार्रवाइयुनि में ॿिनि औरतुनि समेत टेवीह जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। एस एस पी सखर अज़हर ख़ान जे ख़ासि हिदायतुनि ते पनवाकिल ऐं साइट एरिया सब डिवीज़न में टारगेट ऑपरेशन कया विया, जिन दौरान वॾी मिक़दार में गुटको, सोपारियूं, आइस ऐं शराब हथ कई वई। पुलिस तर्जुमान मौजिब पनवाकिल पुलिस शराब, गुटकी ऐं सोपारियुनि जे गैर क़ानूनी विकिरे में मुलविस नौमान अब्बासी, अनीसु रहमान दायो, उमेर मलिक ऐं अज़हर माहिर खे गिरफ़्तार करे सदन कब्ज़े मां वॾी मिक़दार में गुटको, सोपारियुनि जूं पटियूं ऐं शराब जूं बोतलूं हथ कयूं। सखर खां यार मोहम्मद सुमरो जी रिपोर्ट मूजिब हुन साइट एरिया सब डिवीज़न में खोसा गोच ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में वॾे सर्च ऑपरेशन दौरान ॿिनि औरतुनि समेत 19 जवाबदार गिरफ़्तार कया विया। पुलिस मूजिब जवाबदारनि वटां 155 आइस जूं पतियूं, 30 लीटर खां वधीक कची शराब, शराब तयार करण वारो सामान, हिकु मोटरसाइकिल ऐं 22,700 रुपया रोक रक़म हथ कई वई, जॾहिं त शराब जूं भतियूं पिणु ड्राई पट कयूं वयूं। बे तरफ़

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहिरें ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो, जीअं हुजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
2: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-703।